0: This is a public service announcement.
1: The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Hazar 97.1 FM.
5: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले.
6: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077-30-791-412 or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
7: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो. आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए.
8: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं.
7: सलासा ट्यूशन सेंटर?
8: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटन डेल NG2 4LG में है.
7: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता.
8: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है.
7: फिर तो मैं आज ही उनसे रابطہ करता हूँ.
9: जी हाँ, आज ही रابطہ कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01115916823 कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा.
10: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
11: आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM.
12: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन. सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां. तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ.

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Hazar 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के
6: इट्स कमर्शियल टाइम।
7: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
8: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
7: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
8: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त लेने।
7: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
8: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
7: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ, और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
9: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
7: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
10: अरियाना सुपरमार्केट, 126132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8 3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू'ल लव।
11: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
12: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
11: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
12: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
11: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
12: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
13: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
11: Park Foods, जो नाम है मायार का।
14: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
15: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
14: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 AM till 10:30 PM.
15: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
14: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
16: You are listening 97.1 FM.
17: मोहब्बतों में शुमार कैसा, यकीन कैसा, गुमान कैसा, सवाल कैसा, जवाब कैसा, अरूज कैसा, जवाल कैसा, मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में हिसाब कैसा। इन्हीं मोहब्बतों को समेटे हुए हम हैं आपके साथ
18: 97.1 FM।

0: जो
1: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
2: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
3: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
4: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
3: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
4: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
3: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
4: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
3: AMH सॉलिसिटर्स, होर कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम करदे ने, सोने ते सुहागा ए कि ओ हर तरह दा वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी करदे ने।
4: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
3: हां जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
4: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
3: लो जी, ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
5: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Bayesford, Nottingham, NG7, 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. It's commercial time.
2: Are you passionate about arts, culture, and making a difference in your community? Breeze Connect is looking for a creative and enthusiastic arts officer to help develop exciting projects, organize cultural events, and engage local communities through the arts. If you're ready to turn your creativity into a rewarding career, we'd love to hear from you. Apply online today by visiting www.breezeconnect.org.uk. Join Breeze Connect and help inspire communities through creativity.
3: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
4: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
5: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
4: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
5: मुगल बिल्डर्स?
4: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
6: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
4: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
6: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
4: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।
7: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन। सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहाँ। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हैं तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड डेंटन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 0759315066। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-21-07932।
5: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser. Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटरपीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715 2.
8: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
9: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
10: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
9: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
10: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
9: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
10: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
9: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodpro Road, Nottingham, NG3 5QS।
10: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
9: टेस्ट भी वाइब भी।
11: You are listening 97.1 FM.

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Hazar 97.1 FM.
5: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले.
6: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077-30-791-412 or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
7: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो. आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए.
8: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं.
7: सलासा ट्यूशन सेंटर?
8: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्टफोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है.
7: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता.
8: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफस्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है.
7: फिर तो मैं आज ही उनसे रापता करता हूँ.
9: जी हाँ, आज ही रापता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231. कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा.
10: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
11: आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM.
12: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन. सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहाँ. तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ.

0: It's commercial time.
1: हेलो सुमान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है। और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW।
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.
11: मोहब्बतों में शुमार कैसा, यकीन कैसा, गुमान कैसा, सवाल कैसा, जवाब कैसा, अरूज कैसा, जवाल कैसा, मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में हिसाब कैसा, इन्हीं मोहब्बतों को समेटे हुए हम हैं आपके साथ
12: 97.1 FM।
13: It's
14: music never sounded better.
15: Fazan 97.1 FM.
16: I love it.
10: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद ली सी जी।
3: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे, सोने ते स्वागा ये, क्यों हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Baseford, Nottingham, NG7, 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Huzza 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: nave ali.
1: It's commercial time.
2: Are you passionate about arts, culture, and making a difference in your community? Breeze Connect is looking for a creative and enthusiastic arts officer to help develop exciting projects, organize cultural events, and engage local communities through the arts. If you're ready to turn your creativity into a rewarding career, we'd love to hear from you. Apply online today by visiting www.breezeconnect.org.uk. Join Breeze Connect and help inspire communities through creativity.
3: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
4: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
5: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
4: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
5: मुगल बिल्डर्स?
4: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
6: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्क टॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
4: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
6: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
4: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।

0: हाँ हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजाना 97.1 FM पर।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फ्रेड डंकन रोड नॉटिंघम या अभी रابطہ करें 0759315069। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715 2.
8: You are listening 97.1 FM.

ऐसे वैसे जाने लोग कैसे मतलब से बात करें तन्हा रात और यार तेरी इस कश्मकश में चाहे दिन या शाम पूरी कायनात हो लिखूं तेरी सदाएं पढ़ू सारी दुआएं फिर भी तू रास ना आए हम तेरे खास सताए माना हम मर ना पाए जी के भी कर ना पाए तेरी मोहब्बत की जो कीमत थी वो

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार, यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ, और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-21-07932।
4: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
9: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
10: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
9: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
10: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
9: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
10: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
9: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
10: हर दिन को बनाएं स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
9: टेस्ट भी वाइब भी।
11: You are listening 97.1 FM.

जी तो लिसनर्स वेलकम बैक, रेडियो 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से आपका मेजबान आसकान एक बार फिर आपके साथ। गुड मॉर्निंग नॉटिंघम जी, गुड वाली मॉर्निंग नॉटिंघम में आपको दिल किया था गहराइयों से खुश आमदीद कहते हुए स्वागत उन समातों के लिए है जिन्होंने इस वक्त मुझे ट्यून के 97.1 एफएम पे या फिर डैप पे या हमारी ऐप पे। डैप पे आप हमें फिजा के नाम से सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा बताते चलें कि ऐप को डाउनलोड करने के लिए आपको जाना पड़ेगा गूगल प्ले पे या प्ले स्टोर पे, वहां जाके आप टाइप करेंगे रेडियो फिजा 97.1 एफएम ऑफिशियल और फिर एक खूबसूरत कलर का बैकग्राउंड होगा जनाब पर्पल कलर का और उसके साथ फिजा गोल्डन कलर में उसके ऊपर लिखा हुआ होगा, आप उसको डाउनलोड करेंगे गेट करेंगे और यही आवाज ठहरेगी गुड मॉर्निंग नॉटिंघम कहते हुए आपकी समातों की नजर। मौसम की कशीदाकारी और मौसम की सूरत हाल कैसी है एक बार फिर से आपको रिमाइंड कराते चले जनाब। आज नॉटिंघम शहर का टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस और मैक्सिमम और मिनिमम 12 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। फिजा में ह्यूमिडिटी की लेवल है जी 0% इस वक्त और ये जो सनी इंटरवल है और ये जो सनी मौसम है जो धूप है ये रात को ऑलमोस्ट 8 बजे तक आपके साथ रहेगी। आज रात के हवाले से आपको बताते चलेंगे, टुनाइट इज एक्सपेक्टेड टू बी क्लियर एंड ड्राई तो आउट सम पैचेस ऑफ क्लाउड में मूव टूवर्ड्स द एंड ऑफ द नाइट टूवर्ड्स ईस्ट टिल एंड ऑफ द नाइट यानी सुबह सहर यानी डॉन के टाइम तक कुछ पैचेस ईस्ट की तरफ से क्लाउडी से पैचेस मूव होंगे लेकिन बारिश के कोई इम्कान नहीं है।

0: गुड मॉर्निंग नॉरिंगम का खूबसूरत सफर है और बात हम करते हैं अक्सर मोटिवेशन पे और उन चीज़ों पे जो चीज़ें हमेशा आपके साथ रहती हैं, लेकिन जो चीज़ें आपके साथ नहीं रहती वो कौन सी हैं? वो होती हैं कि आपका मजबूत इरादा कभी आपके साथ नहीं रहता। जी बिल्कुल, ठोस एकदम आपका गोल ऐसा होना चाहिए कि जिसको कोई भी हटा ना सके। कुछ लोग ऐसे होते हैं, मेरी तरह के लोग कह ले, कि जो अक्सर किसी जगह पे या किसी सिचुएशन में अपने इरादों को थोड़ा सा खो देते हैं। सरकमस्टेंसेस ऐसे हो जाते हैं कि फिनोमिनाज ऐसे मिलते हैं और इंसान की स्पॉन्टेनियसनेस उसका साथ नहीं देती, तब इंसान को हालात की मौजूदगी में, हालात के पेश नज़र अपने इरादों को थोड़ा सा हटाना पड़ता है, थोड़ा सा मूव करना पड़ता है। लेकिन अगर आपके गोल क्लियर हों, अगर आपकी लाइफ में आपके गोल क्लियर हैं, तो फिर वो मजबूत इरादे कभी भी ख़त्म नहीं होते। यही पहचान है जनाब एक स्लो एंड जो कहते हैं ना, स्लो एंड स्टडी ऑलवेज विन द रेस। वो किसी जगह पे ठीक है लेकिन किसी जगह पे गलत भी हो जाती है, क्योंकि गलत इसलिए होती है कि जब इंसान सरकमस्टेंसेस की वजह से, यानी मौजूदा हालात की वजह से अपनी जो इरादे हैं उनको थोड़ा सा खो देता है, यानी उनकी तरफ से हल्का सा मूव आउट हो जाता है, तो फिर मंजिल और दूर हो जाती है। लेकिन ऐसे लोग जो अपने इरादों को मजबूत ही रखते हैं और किसी सूरत में भी अपने जो पैर है उनको जमाने से हटाते नहीं है, वो कामयाब होते हैं। ले जी एक खूबसूरत सी कमर्शियल।
1: इट्स कमर्शियल टाइम।
2: हर बार की तरह इस बार पाकिस्तान फोरम नॉटिंगम लेकर आया आपके लिए नादरा सर्जरी। अगर आपका नाइक कॉप एक्सपायर होने को है या आप नया अप्लाई करना चाहते हैं, तो फिर विजिट कीजिए ना चैपल हाउस नॉयल स्ट्रीट नॉटिंगम ND7680 on Sunday 2nd August 2026 from 10 AM to 2 PM. Mazid malumat ke liye abhi visit kijiye hamari website pakistanforum.co.uk. To book an appointment please call 07802988615. Only a limited number of slots available.
3: Are you highly organized with excellent leadership and administration skills? Breeze Connect is looking for an experienced office manager to oversee daily operations, support our growing team, and help keep our organization running efficiently. If you're a motivated professional who enjoys making things happen, we'd love to hear from you. Apply online today by visiting www.breezeconnect.org.uk. Join Breeze Connect and grow your career with us.
4: What happened? You look very happy.
5: I have some fantastic news. My wife's got her visa.
4: Congratulations. That was very quick.
5: I was very lucky. I used the local visa experts.
4: Who helped you with the application?
5: AMH solicitors. They were brilliant, friendly, fast and very responsive. And best of all, they deal with all sorts of visas, extensions, indefinite leave to remain and citizenship applications.
4: Where is AMH solicitors based?
5: Nottingham Road, New Basford, Nottingham.
4: Brilliant. I will contact them to help my family visa.
5: Sure, their number is 0115-671-3677 and they are in Pure Gym building. So, parking is available and they also offer free initial consultation.
6: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115 671 3677.

जी तो लिसन, वेलकम बैक रेडियो 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से एक बार फिर आपका मेजबान आसिफ खान आपके साथ। गुड मॉर्निंग नॉटिंघम जी, गुड वेरी मॉर्निंग नॉटिंघम में आपको दिल किया था गहराइयों से खुश आमदीद कहते हुए वेलकम वेलकम वेलकम स्वागत है उन समातों का जिन्होंने इस वक्त मुझे ट्यून किया 97.1 एफएम पे डैप पे या फिर हमारी ऐप पे। एक और चीज़ आपको बताते चले रहे हैं, ऐप के अलावा आप हमें कैसे ट्यून कर सकते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग हमारे पास मौजूद है liveradiofaza.co.uk। इस पर आप जाएंगे, एड्रेस बार में टाइप करेंगे और उसके बाद जब आप प्ले करेंगे तो यही खूबसूरत सी आवाज़ ठहरेगी आपकी स्मार्टों की नज़र। गुड मॉर्निंग नॉटिंघम कहते हुए जी, खूबसूरत इसलिए कहा कि किसी ने मुझे मैसेज किया। मैसेज कैसे किया? मैसेज व्हाट्सएप पे किया जी, 01157100971 ये वो नंबर है जिस नंबर से आप मुझे रابطہ करेंगे और शामिल हो जाएंगे लाइव प्रोग्राम में, विच इज गुड मॉर्निंग नॉटिंघम। तो समझाएं सुलझाएं बतलाएं कैसे अब सब लोग की फहवाल मागा वर्तनम सुगम सुगम अणु के बोन जो की हाल चाल है मेरा दे तुआडा।

0: बिल्कुल जनाब, तो मेरी यादों में रहना जाना कहीं मत, यही है खूबसूरत बीजीएम। लेकिन हम बात करते हैं मोटिवेशन सक्सेस पे और जिंदगी कैसे मामलात पे, जो मामलात हमेशा के लिए हमारे साथ जिंदगी में रहते हैं। और कभी कभी हमें ये भी एहसास होता है, हमें ये महसूस होता है कि लोग हमें छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन हमारा मजाक भी उड़ाया जाता है। कहीं ये भी बताया जाता है कि यार ये तो मस्खरा है, ये तो कभी कभी जिंदगी में कभी सीरियस नहीं होगा, इस बंदे को सीरियस आना होना आता ही नहीं है और जरूरत नहीं है जिंदगी में इतना सीरियस होने की। जिंदगी में मोटिवेट रहना आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप जानते हैं कि सेगमेंट मेरे बड़े खूबसूरत से होते हैं और अब एक खूबसूरत सेगमेंट है मोटिवेशनल सक्सेस पर्सनैलिटी, यानी कि पर्सनैलिटी ऑफ द डे। जनाब आज भी ऐसे ही मस्करे सी शख्सियत मेरे पास मौजूद हैं, बूझो तो जाने, अरे बूझ तो आप गए होंगे, लेकिन अपने कमेंट्स में बताइएगा कैसे। 01157109701007 पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके। जी बिल्कुल, रोविन एटकिंसन जी, जिसको दुनिया मिस्टर बीन के नाम से जानती है। क्या सक्सेस स्टोरी है, किस तरह लोगों के साथ मजाक करते हुए उस बंदे ने जिंदगी का मजाक कभी नहीं उड़ाया, जिंदगी को बहुत सीरियस लिया, लेकिन मजाक मजाक में एक ऐसी खामोश कॉमेडी, एक ऐसी साइलेंट कॉमेडी जिसको इंसान हमेशा सोचता है, देखता है, हंसता है और फिर मोटिवेट होता है, किसी न किसी स्टोरी की तरफ इंसान लेके चलता है। और जब इंसान मिस्टर बीन को देखता है तो फिर कहता है कि यार जिंदगी में तो कोई मसले हैं ही नहीं। तो सुने जनाब इस खूबसूरत सी पर्सनैलिटी की क्या सक्सेस स्टोरी है और आज ये बंदा किस पोजिशन पर है, किस मकाम पर है, ये सारी चीज़ें मेरे लिसनर्स के लिए, मेरे लिए और आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। स्टे ट्यून्ड फॉर 7.1 FM, enjoy कीजिए मोटिवेशनल सक्सेस स्टोरी ऑफ रोवन एटकिंसन, यानी कि मिस्टर बीन। और इसके उस पार इस पे तबसरा भी किया जाएगा, फिर आपके कुछ खूबसूरत से ट्रैक्स भी हैं। बिल्कुल जनाब, कोई शहरी बाबू, दिल लहरी बाबू, ये सारे ट्रैक्स मेरे पास मौजूद हैं रिमिक्स कंडीशन में। जरा पुराने दौर को ओल्ड इज गोल्ड बनाने के लिए आपके साथ मौजूद हूँ। एनीवे, फर्स्ट ऑफ ऑल मिस्टर बीन को एंजॉय कीजिए, फिर मिलते हैं इस सेगमेंट के उस पार।
1: Rowan Atkinson was born in a middle-class family. He suffered terribly as a child because of his stuttering. He was also teased and bullied at school because of his looks. His bullies thought he looked like an alien. He was soon marked as strange and became a very shy, withdrawn kid who didn't have many friends. So he dived into science. One of his teachers said, "There was nothing outstanding about him. I didn't expect him to become a fantastic scientist." But he proved everybody wrong and got admitted at Oxford University. During his days in Oxford, he started falling in love with acting, but couldn't perform due to his speaking disorder. So he got his master's degree in electrical engineering before appearing in any movie or TV show. So after getting his degree, he decided to pursue his dream and become an actor. So he enrolled in a comedy group, but again, his stammering got in the way. A lot of TV shows rejected him, and he felt devastated. But despite the many rejections, he never stopped believing in himself. He had a great passion for making people laugh, and he knew that he was very good at it. So he started focusing more and more on his original comedy sketches, and soon realized that he could speak fluently whenever he played some character. I found that when I played a character other than myself, the stammering disappeared. But even though he found a way to overcome his stuttering, he also used it as an inspiration for his acting. While studying for his master's, Rowan Atkinson co-created the strange, surreal, and non-speaking character known as Mr. Bean. Even though he had success with other shows, Mr. Bean made him globally famous. So despite all the obstacles he faced because of his looks and his speaking disorder, he proved that even without a heroic body or a Hollywood face, you can become one of the most loved and respected actors in the world. Today, he has a net worth of $130 million and it's one of the most popular actors and comedians in the world. The motivational success story of Rowan Atkinson is so inspiring because it teaches us that to be successful in life, the most important things are passion, hard work, dedication, and never giving up. Because without caring about our feelings and weaknesses, everyday life places obstacles on our path to success. Those obstacles come as failures, other people's opinions, rejections, self-doubt. But life also rewards those who are willing to keep moving forward. Each new day comes with an important choice to be made. Either we fill it with our best work or we allow it to slip away with our unfulfilled dreams. You don't have another life. The hours are going to pass anyway. How are you gonna fill your day? With hard work and determination to succeed, or with crying about the past and feeling embarrassed for your failures and weaknesses? It's impossible to reach success without facing failure. Setbacks and failures are inevitable in life. We can't prevent them from happening, but we can choose how to handle them. No one is born perfect. There is not a single person on this planet who hasn't failed at something. Don't be afraid. People can accomplish amazing things every day in spite of their weaknesses and failures. So go and do the best you can with the one life you've got. So, what's your story?
0: वाह ले जी जबरदस्ती मिस्टर बीन की इंस्पायरेशनल स्टोरी और मैं तो इतना मोटिवेट हो चुका हूँ कि बस प्रोग्राम खत्म करने की देर है, उसके बाद देखें आज मैं तबाहियां मचा दूंगा, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो फिर मुझे बताएं 1157100971 पे मैसेज करके। लुबे लबाब स्टोरी का ये है कि जनाब लाइफ एक बार ही मिलती है, कोई भी इंसान परफेक्ट पैदा नहीं होता। आप हर दिन कभी भी जनाब सोना नहीं उगल सकते, कभी भी आप मोती नहीं उगा सकते, तो अपना बेस्ट दीजिए। आपने सिर्फ क्या करना कि अपना बेस्ट देना है और उसके बाद ऊपर वाला है ना उस पर छोड़ दीजिए हर चीज और वो आपको बनाएगा द ग्रेट एंड एफर्टलेस पर्सनैलिटी ऑन द अर्थ। लेकिन अगर आप ये बन जाते हैं कि एफर्टलेस पर्सनैलिटी यानी आप दिखावे में कुछ ना करें, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई चीज कर रहे हैं तो कुछ लोग होते हैं तरगीब के हवाले से, रगबत के हवाले से कि अगला भी ये चीज सीखे, दिस इज समथिंग एल्स। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि अगला ये भी सोचे साथ साथ कि भाई ये कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये उसकी हेडिक नहीं है। आपने सिर्फ सक्सेस देनी है, कैसे दे रहे हैं ये आपकी मर्जी है, ऊपर वाला आपको देख रहा है। तो स्टेट यून, इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ ना कि मोटिवेट रहने के लिए, पर्सनैलिटी को इंस्पायरेशनल रखने के लिए आपके इर्द गिर्द हल्का अहबाब भी ऐसा ही होना चाहिए, जो आपका हल्का यारा है, जो आपका इन्वायरमेंट है। वो इन्वायरमेंट कैसा हो, वो इन्वायरमेंट ऐसा हो जैसे बहुत ही खूबसूरत फूल जैसा हो, बिल्कुल फूल जैसा इन्वायरमेंट आपको कभी कभी सुस्त भी कर देगा। अच्छे लोगों में उठे बैठे, मोटिवेशन लोगों में उठे बैठे, मोटिवेशनल पर्सनैलिटीज को फॉलो करें। और उसके बाद अगर आप ज्यादा टाइम अपना सोशल मीडिया को देते हैं, स्क्रॉल अप स्क्रॉल अप स्क्रॉल अप लगे रहते हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो ऐसी सर्च कीजिए, ऐसी पर्सनालिटीज को उठाइए जो हमेशा आपके लिए इंस्पायरेशनल हो, ताकि जिंदगी में आप कुछ ना कुछ कर सकें। तो जनाब खूबसूरत से ट्रैक्स भी हमारे पास मौजूद हैं जो मैंने आपके लिए रखे हुए हैं, सुनिए ट्रैक्स भी, ये भी साथ साथ रहेंगे, तंजो मजा भी रहेगा और गपशप भी रहेगी। स्टे ट्यून्ड एंड योर होस्ट इज हियर।

तो अक्सर लोगों को ये एहसास रहना चाहिए कि लोगों का पता बहुत आसान होता है, लेकिन आसान पते के साथ पहुंचना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए अक्सर लोग कह देते हैं ना कि यार पता नहीं था मुझे, आपका अंदाज़ा नहीं था, मैसेजेस सीन करके भी रिप्लाई नहीं करते, या मैसेजेस रिप्लाई करने के लिए उनका दिल नहीं करता, तो फिर कुछ रिपोर्ट्स ऐसी लगा देते हैं। ये मेरे पास एक विशेष टिप्पणी है, छोटी सी एक राय है मेरी, जो अपने विचार हैं किनके हवाले से। बिल्कुल जनाब, आतिका हमें ट्यून कर चुके हैं दुबई से, वर्षा थैंक यू वेरी मच जनाब, बहुत बेहद शुक्रिया आपने ट्यून किया वहाँ से। और जितने भी हमारे लिसनर्स हैं जो नॉटिंगहम शायर से हैं, जो बाहर से भी हमें ट्यून करें, आपकी मोहब्बतें हमारे साथ हैं।

तो जनाब इसलिए ऐसे लोग जो आप लोगों के लिए हर वक्त अवेलेबल रहते हैं, कभी कभी लोग कहते हैं ना कि आप अपनी पर्सनैलिटी कम कर देते हैं, आप अपनी पर्सनैलिटी को डिसअपियर कर देते हैं लोगों की नज़र में, आप अपनी पर्सनैलिटी को खो देते हैं। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। हर किसी के लिए अवेलेबल रहना जब उसे आपकी ज़रूरत हो, और जब आपकी ज़रूरत ना हो तो फिर आपको भी उसकी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। कभी भी किसी की हेल्प अगर आप करें ना अपनी मोटिवेशन लाइफ में, आज के दिन आप ये सोचें कि आज का बाकी दिन आपने कैसे गुजारना है, अपनी बिजी लाइफ में अपने बिजनेस को कैसे मोटिवेट करना है, अगर आप एम्प्लॉयर हैं तो अपने एम्प्लॉयज़ को कैसे लेके चलना है, अगर आप एम्प्लॉय हैं तो फिर आपने अपनी जिंद जान कैसे वारनी है अपने एम्प्लॉयर के ऊपर सिंसियरिटी के साथ और मॉरेलिटी के साथ। ये सारी चीज़ें तब आपके पास आएंगी जब आप एक अच्छे इंसान बनेंगे। तो अगर ये सोचें कि आप किसी के लिए अवेलेबल हैं और कोई आपके लिए अवेलेबल नहीं है तो फिर ये अच्छे इंसान होने की खासियत नहीं है। किसी को ये जता देना, किसी को ये बता देना कि नहीं यार मैं तुम्हारे लिए अवेलेबल नहीं हूँ, दिस इज़ नॉट एन इम्पॉर्टेंट, अगले को फील आना। लेकिन जब वो इस दश्त में बिल्कुल अकेला रह जाए, बिल्कुल तन्हा रह जाए इस दुनिया के अंदर, तो फिर आपकी उंगली

0: बिल्कुल ना, बड़ी जबरदस्त से टॉपिक है, पहली बार मोहब्बत की है। अगर आपको पहली बार मोहब्बत हुई किसी से तो मुझे लाजमी बताइएगा। एनीवे, ये हमारा टॉपिक नहीं है। हंसना मुझे क्यों याद आया कि जनाब हमारे बड़े बॉस शायद अगर ये सुन रहे हो तो पहली बार मोहब्बत बड़ी मुश्किल होती है। जब आपको मोहब्बत किसी भी चीज़ से हो जाए ना 145, तो फिर आप कुछ सोचते हैं, कुछ समझते हैं, कुछ परखते हैं, कुछ लोगों को बताते हैं कि यार इसकी फीलिंग्स कैसी होती हैं। एनीवे, मोहब्बत की कोई उम्र नहीं होती, मोहब्बत की कोई कैद नहीं होती। आप जिंदगी में हर किसी अपने काम से भी मोहब्बत कर सकते हैं, अपने इश्क से, अपने प्यार से, अपनी सोच से, अपने अंजाम से, अपने इख्तिताम से, हर चीज से मोहब्बत आप कर सकते हैं। और ऐसी होनी चाहिए कि फिर वे लोस हो और लोग ये सोचें, ये बताएं कि यार गुड मॉर्निंग नॉटिंघम में खूबसूरत सा रोमांटिक सा प्रोग्राम क्यों शुरू हो चुका है। हंसना मुझे आ नहीं रहा, हंसी में रोक नहीं पा रहा। कुछ मिले जुले से अल्फाजात हैं, कुछ मिले जुले से एहसासात हैं, और कुछ चीजें मेरे जहन में आई, दौड़ पड़ी, गुजर गई, उनको गुजरने दी। यानी वे तंज मजाक तो साथ साथ चलता रहे थे। गुड मॉर्निंग नॉटिंघम, ये खूबसूरत सफर अपने इख्तिताम को पहुंचने, जैसा कि आप जानते हैं मेरा और आपका साथ रहता है एवरी मंडे टू सैटरडे, डेफिनेटली रहेगा 8 to 10 AM इन द मॉर्निंग टिल 10। हाँ जी, 8 to 10 मैंने ऑलरेडी बता दिया, 8 से 10 बजे तक सुबह हो, ताकि आपकी सुबह मजीद स्वस्थ बना सकी जा सके। अजीब सी वर्डिंग हो गई है, थोड़ी सी ना फंबलिंग हुई है, लेकिन किसी का मैसेज ऐसा है कि अक्सर ना कोई ऐसा बड़ा कॉन्फिडेंट भी हो ना ब्रॉडकास्टर, उस पर थोड़ा सा उस वक्त एक जुनून सा तारी होता है, या उसकी थोड़ी सी एनर्जी डाउन होती है जब एक अनएक्सपेक्टेड मैसेज ऐसे बंदे की तरफ से आ जाए जिसका आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो। एनीवे, गपशप हमारी साथ साथ चलती रहेगी, स्टे ट्यून्ड फॉर 97.1 FM एंड डेब। आपका मेजबान नासिर खान आपके साथ मौजूद है। अपने मेजबान नासिर खान को दीजिए आज के दिन के लिए इजाजत। कल जनाब नए सब्जेक्ट के साथ, नई मोटिवेशन के साथ, नई पर्सनैलिटीज के साथ रहेगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए गुड बाय, गुड बाय, गुड बाय नॉटिंघम।
1: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
2: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077-30-791-412 or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
3: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
4: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में A stars और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
3: सलासा ट्यूशन सेंटर?
4: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्टफोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
3: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
4: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
3: फिर तो मैं आज ही उनसे रابطہ करता हूँ।
5: जी हाँ, आज ही रابطہ कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
6: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces building trust.
7: आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM.
8: This is a public service announcement.
9: Everybody. The station.
10: That plays
11: foot tapping music.
12: Faza 97.1 FM.
13: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन. सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां. तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड ऐप.
14: You are listening 97.1 FM.

السلام عليكم، نمستي، ستي أكار. Hello, hello, hello. A very beautiful, charming and exciting morning to all my listeners who are listening me right now. मैं हूं आप सभी की होस्ट ज़ैनब फातिमा और आप सबको वेलकम करती हूं आपके फेवरेट शो द डीवा डायलॉग जो कि ऑन एयर होता है सिर्फ और सिर्फ रेडियो फजा 97.1 FM पे।

जी तो लिसनर, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रेडियो फजा 97.1 FM ही है वो वाहिद प्लेटफॉर्म जहां आपको मिलती है तीन चीजों का एक अच्छा प्यारा कॉम्बिनेशन, जहां आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, कम्युनिकेशन मिलती है और साथ ही साथ आपको एंटरटेनमेंट का डोज मिलता है। यानी कि हमारा पूरा मकसद, हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम मिलकर बनाएं आपके आज के इस दिन को खूबसूरत, मेमोरेबल और कुछ इंटरेस्टिंग, साथ ही साथ कुछ पॉजिटिविटी के बारे में भी बातचीत हो और साथ ही साथ कुछ चटपटा सा म्यूजिक भी शो में शामिल किया जाए। सो हमेशा की तरह आज भी मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, हैरियत से होंगे, अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं मगन होंगे और अब तक अपने दिन का आगाज कर चुके होंगे। लेकिन अगर अभी तक आपने अपने दिन का आगाज नहीं किया, सो इट्स अ टाइम, इट्स अ मोमेंट, आइए मिलकर करते हैं इस खूबसूरत से दिन का आगाज। जैसा कि आज आप देख ही सकते हैं कि आज मौसम में काफी कदरे बेहतरी है और काफी ज्यादा तब्दीली रोनुमा हो रही है। यानी कि हल्की हल्की सी हवा चल रही है और साथ ही साथ चिड़ियों की चनचनाहट और ये सारा ओवरऑल लुक और दिखने में भी काफी अच्छा लग रहा है और माइंड को भी काफी हद तक रिफ्रेश कर रहा है। चलो लिसनर्स, मैंने तो स्टूडियो आते आते रास्ते में ये खूबसूरत सा मौसम देखा और इसे एंजॉय किया। लेकिन अगर आपने इस खूबसूरत मनाजिर को अभी तक नहीं देखा, सो अभी भी मौका है कि उठिए, कमरे से बाहर निकलिए, बालकनी में जाएं और इस खूबसूरत से मौसम को एंजॉय करें।

तो लिसनर्स, हमारी हमेशा से कोशिश होती है कि शो में, जैसे कि टीवा डायलॉग में, कुछ आपको अपनी बातें सुनाई जाएं और साथ ही साथ कुछ आपकी बातें सुनी जाएं। सो द लिसनर्स, अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी गुफ्तगू को अपने शो में शामिल करें, सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? 0115710097. हाँ, हमारे स्टूडियो का लाइव नंबर यानी कि मेरा और आपका राब्ते का नंबर, इस नंबर के थ्रू आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ना सिर्फ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं बल्कि वो सभी बातें शेयर कर सकते हैं जो इस वक्त आपके दिलो दिमाग में चल रही हैं, या फिर कुछ ऐसा नया जो आपने रिसेंटली डिस्कवर किया हो, या फिर इसके अलावा आपको चाहिए हो कोई अच्छी सी प्यारी सी पीस ऑफ एडवाइस। होता है ना कि इंसान को चाहिए होती है एक अच्छी एडवाइस और एक अच्छा कंपेनियन फ्रेंड। सो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपको एक अच्छी प्यारी एडवाइस दें, साथ ही साथ आपके लिए बने एक अच्छा कंपेनियन। इसके अलावा आप हमें यह भी बता सकते हैं कि आप किस हवाले से गुफ्तगू सुनना चाहते हैं, आपका फेवरेट टॉपिक क्या है, या फिर कोई ऐसी न्यू चीज जो आप डिस्कवर करना चाहते हैं। सो हम पूरी कोशिश करेंगे कि उन तमाम तर बातों को, उन तमाम तर चीजों को शो में शामिल करें और मिलकर कुछ नया इनोवेट करें। सो डियर लिसनर्स, साथ ही साथ बताती चलती हूँ, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है radiofazan.com.uk, यानी इस वेबसाइट के थ्रू आप हमें ट्यून कर सकते हैं और अपने इस सफर को, अपने इस दिन को मजीद खूबसूरत, खुशगवार बना सकते हैं एक नई तर्ज के साथ, एक नई पॉजिटिविटी के साथ। वैसे तो हमारी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना भी बहुत इजी सा है, सिंपल सा मेथड है, वो भी आप सभी से शेयर कर देती हूँ। अच्छा, तो हमारी एप्लीकेशन है रेडियो फजान 97.1 FM, और अब इसको इंस्टॉल किस तरह से करना है उसका तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ। सो सिंपली आपको जाना होगा एप्पल स्टोर या फिर गूगल स्टोर। वहां जाके आपको सर्च करना होगा रेडियो फजान 97.1 FM, और विद इन अ फ्यू सेकेंड्स एक पर्पल कलर का स्क्रीन आइकन आप सभी की स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। जी हाँ, यही है हमारी एप्लीकेशन। सो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से इसको इंस्टॉल कर लीजिए, ताकि आप हमें इसी तरह से ट्यून करते रहें और आपको डेली की अपडेट्स मिलती रहें, और साथ ही साथ आप ये जान सकें कि आपका फेवरेट आरजे कौन से दिन किस शो में आ रहा है। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहें, तो जरूरी है कि आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लें। अब जरा बात करते हैं उन सभी लिसनर्स की जो कि ड्राइव कर रहे हैं, या फिर इस वक्त अभी घर से बाहर निकले हैं कि अपने इस सफर का आगाज करें, अपने इस दिन की जर्नी का आगाज करें, और गाड़ी में बैठ चुके हैं। सो सबसे पहले तो ये कि आप ड्राइविंग करते हुए अपना पूरा फोकस ड्राइविंग पे रखें, लेकिन साथ ही साथ इस सफर को, इस जर्नी को और डेस्टिनेशन को भी तो बनाना है खूबसूरत। सो उसके लिए आप हमें ट्यून कर सकते हैं फजा डैप के थ्रू। सो डियर लिसनर्स, ये थे वो सभी तरीके जिनसे आप हमसे और हम आपसे जुड़ सकते हैं। सो हमें अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते रहिए इन सभी तरीकों के जरिए। डियर लिसनर्स, हमेशा की तरह शो का स्टार्ट करते हैं एक खूबसूरत से, एनर्जेटिक से सॉन्ग से। जैसा कि आज मौसम बहुत अच्छा है, और मौसम जब अच्छा होता है तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड भी अच्छा हो जाता है। सो आई थिंक सो कि आज सभी लिसनर्स का मूड भी पहले से अच्छा होगा, लेकिन इसे मजीद अच्छा करते हैं ये खूबसूरत सा ट्रैक सुन के। तो जी आइए मिलके सुनते हैं ये ट्रैक। ट्रैक के उस पार होती है आपसे मुलाकात, तब तक के लिए हमारे साथ रहिए।

0: स्टेम सेल डोनेशन की अपील कर रहे हैं जो इस समय अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं, उन्हें अर्जेंटली एक लाइफ सेविंग स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की जरूरत है। हेलो नॉटिंगम, हम एक डेडिकेटेड लोकल डॉक्टर और यंग फादर के लिए एक अर्जेंट स्टेम सेल डोनेशन की अपील कर रहे हैं जो इस समय अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं, उन्हें
1: You are playing. Fazan 97.1 FM.

0: It's commercial time.
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार, सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडिल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: अरियाना सुपरमार्केट, 126132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8 3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू'ल लव।
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinentendale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.
11: मोहब्बतों में शुमार कैसा, यकीन कैसा, गुमान कैसा, सवाल कैसा, जवाब कैसा, अरूज कैसा, जवाल कैसा, मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में हिसाब कैसा, इन्हीं मोहब्बतों को समेटे हुए हम हैं आपके साथ
12: 97.1 FM.
13: Turn it up, Radio Faza 97.1 FM.

वेलकम बैक लिसनर्स। जैसा कि हमने सुना एक खूबसूरत सा प्यारा सा ट्रैक, और आई नो इस खूबसूरत से ट्रैक ने मेरा तो मूड काफ़ी ज़्यादा बदल दिया है, बल्कि अब पहले की निस्बत मज़ीद अच्छा अच्छा लग रहा है, क्योंकि एक तो इतना खूबसूरत प्यारा मौसम, ऊपर से इतना खूबसूरत और सुरीला गाना। वेल, आप सभी के साथ भी ऐसा होता है कि जब मौसम बाहर का खूबसूरत हो, प्यारा हो, तो ऑटोमेटिकली दिल का मौसम भी अच्छा हो जाता है। सो मेरे साथ तो हमेशा से ऐसे होता है कि जब भी कभी ऐसा हो कि बाहर का मौसम अच्छा हो, हल्की हल्की हवा चल रही हो, हवा में सनसनाहट हो, चिड़ियों की चहचहाहट हो, तो ये सब चीज़ें सुन के देख के मेरा मूड ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है और वी स्टार्ट मैनिफेस्टिंग। वैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैनिफेस्ट करना अच्छी चीज़ नहीं होती, लेकिन मेरा कहना और मानना यह है कि अगर आप कुछ मैनिफेस्ट नहीं करेंगे तो फिर उस पॉइंट तक कैसे पहुंचेंगे। सो अगर आपके ड्रीम्स होंगे बड़े, तभी आप बड़े बड़े मुकाम पर पहुंच सकते हैं, क्योंकि जो इंसान छोटा सोचता है सो उसकी सोच का जाविया महदूद रहता है, लेकिन उसके बरक्स जो इंसान बड़ा सोचता है सो उसकी सोच का जाविया थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है, मुनफरिद होता है। सो जी वेल, इसी चीज़ को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए हमने भी सोचा कि क्यों ना हम भी कुछ अच्छा बड़ा प्यारा सोचें। सो दे लिसनर्स, अगर आपके भी हैं इसी तरह के प्यारे प्यारे बड़े बड़े ड्रीम्स, तो आप अपने सभी ड्रीम्स हमसे शेयर कर सकते हैं। वैसे आज का दिन काफ़ी अच्छा है, काफ़ी प्यारा है, मौसम काफ़ी अच्छा है, तो क्यों ना तमाम सारे लिसनर्स के भी फीडबैक को लिया जाए। तो जल्दी से मुझे टेक्स्ट करिए और बताइए कि आपके ऐसे क्या क्या ड्रीम्स हैं जिनको लेकर आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, या फिर आप क्या अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करते हैं। और इसके साथ साथ ये भी कि अगर आप कुछ मैनिफेस्ट नहीं करते तो आप क्या सोचते हैं, आपके इस बारे में क्या विचार हैं, सभी चीज़ें हमसे शेयर करिए, क्योंकि हम और आप रहने वाले हैं अब से लेके ठीक 2 घंटे तक साथ, तो हमारा और आपका साथ तो रहेगा इसी तरह से बरकरार। सो इस साथ को हम खूबसूरत बनाएंगे, किस तरह से खूबसूरत बनाएंगे, कुछ इस तरह से कि कुछ आपकी बातें सुनेंगे और कुछ आपको अपनी बातें सुनाएंगे। वेल लिसनर्स, इस खूबसूरत सी बात के साथ साथ मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना एक और खूबसूरत सा प्यारा सा सॉन्ग शो में शामिल किया जाए। सो माय लवली डिवास एंड माय जेंटलमैन लिसनर्स, आइए मिलकर सुनते हैं ये खूबसूरत सा एक और प्यारा सा सॉन्ग। वैसे लिसनर्स, अगर आपके भी हैं कोई फेवरेट सॉन्ग रिकमेंडेशन तो हमसे शेयर कर सकते हैं। पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी तमाम तरह रिक्वेस्ट को फुलफिल करूं और शो में मैं वही गाने शामिल करूं जो कि मेरे सभी लिसनर्स को पसंद हैं। सो जी, फिलहाल के लिए तो मैं वो गाना शामिल करने जा रही हूं कि जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। सो आइए मिलकर सुनते हैं ये ट्रैक।

वेल लिसनर्स, कैसा लगा आपको ये खूबसूरत सा ट्रैक? आपको आई थिंक सो अच्छा लगा होगा, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आइए ज़रा शो को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, माई लवली लिसनर्स एंड लवली डीवास, हमारे हर शो का स्टार्टअप होता है एक खूबसूरत से, प्यारे से, मोटिवेशनल से कोट से। क्यों? कोट बना देता है हमारे दिन को मज़ीद खूबसूरत, खुशगवार और बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। और जितने भी नेगेटिविटी, नेगेटिव थॉट्स हम सभी की माइंड में घूम रही होती हैं, गर्दिश कर रही होती हैं, वो भी ज़रा साइड हो जाती हैं। सो मेरी पूरी कोशिश होती है कि हम हर शो में करें एक ऐसी बात जो कि आपके दिलो दिमाग में कहीं ना कहीं नक्श कर जाए, और फिर जब आप तन्हाई में या फिर अकेले कहीं दूर अकेले बैठ कर सोच रहे हों तो आपको वो बात याद आए और आपकी ज़िंदगी को तब्दील कर दे। तो हमेशा की तरह आज भी लेकर आई हूँ मैं आप सभी के लिए एक खूबसूरत सा, प्यारा सा, मोटिवेशनल सा कोट। सो आज का खूबसूरत सा कोट आप सभी से शेयर करती हूँ। सो आज का हमारा कोट ये कहता है कि डोंट स्पेंड योर लाइफ बिल्डिंग अ लाइट हाउस फॉर समवन एल्स स्टॉर्म, बिल्ड इट टू गाइड योर सेल्फ होम। सो बेसिकली हमारा आज का खूबसूरत सा ये कोट ये कहता है कि हम में से कितने लोग हैं जो अपनी पूरी ज़िंदगी दूसरों की खुशियों के लिए, दूसरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, दूसरों को शांत करने के लिए गुजार देते हैं। क्यों? हम उनके लिए रास्ते रोशन करते चले जाते हैं, उन्हें संभालते हैं और इस सब में कहीं ना कहीं खुद को भूल जाते हैं। मगर सुनिए, ये ज़िंदगी आपकी है, दूसरों को तो हमने खुश करना ही होता है, दूसरों के लिए हमें रोशनी बनना होता है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि आप दूसरों के लिए रोशनी बनते बनते बनते खुद को भूल जाएं और खुद अंधेरों में धकेल जाएं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम खुद के अंदर एक ऐसी रोशनी पैदा करें जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाए, जो आपको भटकते हुए कदमों को वापस ले आए, सुकून से आपको घर तक पहुंचाए। पहले खुद से मोहब्बत, पहले खुद का ख्याल, क्योंकि जब आप खुद को रोशन रखेंगे तभी दुनिया को भी रोशनी दे सकते हैं।

सो बेसिकली हमारा आज का कोर्ट का, अगर मैं सिंपल सा आपको वन मीनिंग वन लाइन सेंटेंस को एक्सप्लेन करके समझाऊं, सो हमारा आज का कोर्ट यही कहता है कि दूसरों के लिए एफर्ट्स करना, दूसरों के लिए खुशियां तलाश करना, इट्स अ गुड थिंग, इट्स रियली गुड. लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप ये सब करते करते खुद ही को भूल जाएं, आपको ये ना दिखाई दे कि आप किस जात के लिए क्या चीज़ अच्छी है, आपके लिए क्या बुरा है, सो ये फिर काफ़ी हद तक गलत हो जाता है. क्योंकि दूसरों का ख्याल रखें, दूसरों से प्यार करें, लेकिन सबसे पहले आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए आपका अपना सेल्फ. सो अगर आप अपने लिए सोचेंगे, अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाएंगे, खुशगवार बनाएंगे, तभी आप दूसरों के लिए सोच सकते हैं. अच्छा, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग देखते हैं जो कि अपनी पूरी ज़िंदगी दूसरों के लिए सर्व कर देते हैं, दूसरों के लिए दिन रात काम करते हैं, लेकिन इन सब के बीच में वो अपनी ज़िंदगी जी नहीं पाते, अपनी ज़िंदगी में वो खुशियां तलाश नहीं कर पाते जो उनका हक है. सो इस दुनिया में आए हुए हर इंसान का बेसिक राइट है कि वो अपनी ज़िंदगी को खूबसूरती से इंजॉय करे, ना सिर्फ खूबसूरती से इंजॉय करे बल्कि सबसे पहले सेल्फ केयर करें एंड देन बाद में बाकियों की. सो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारे शो का नाम भी है द डीवा डायलॉग. सो इस हवाले से मैं तमाम तर फीमेल्स को मुखातिब करती हूँ, क्योंकि हमारे जो घरेलू फीमेल्स होती हैं स्पेशली एशियन कम्युनिटीज़ में, तो मोस्टली क्या करती हैं कि वो अपनी ज़िंदगी वक्फ कर देती हैं अपने घर वालों के लिए, घरेलू कामकाज के लिए. मोस्ट ऑफ द टाइम वो क्या करती हैं कि अपने घर वालों की फिक्र में दिन रात लगी रहती हैं. बच्चों का ख्याल रखना, बड़ों का ख्याल रखना, बूढ़ों का ख्याल रखना, बुज़ुर्गों से एहतराम से पेश आना, टाइम पे खाना बनाना, घर को साफ रखना और इस चीज़ का ख्याल रखना कि हर इंसान को उसके बेसिक राइट्स मिले. सो हमारी खवातीन ये तमाम तर ड्यूटी सर अंजाम दे रही होती हैं, और कहीं ना कहीं इन सब में क्या चीज़ मिस होती है, उनका खुद का सेल्फ. सो बहुत सारी हमारी जो फीमेल्स होती हैं वो खुद पर तवज्जो देना छोड़ देती हैं, खुद का ख्याल नहीं रखती, सेल्फ केयर के नाम पर जस्ट एक फेस वॉश से मुंह धो लेती हैं. सो दे लिसनर्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना. आप बहुत अच्छा कर रही हैं, लेकिन आपको भी ज़रूरत है उसी ख्याल की, उसी प्यार की, उसी एहसास की. सो दे सबसे पहले खुद का ख्याल रखिए, फिर दूसरों का ख्याल रखिए, तभी ज़िंदगी खूबसूरत बनेगी, तभी ज़िंदगी प्यारी बनेगी. वेल, उम्मीद करती हूँ लिसनर्स आप सभी को ये हमारा खूबसूरत सा कोट अच्छा लगा होगा. इस हवाले से आपका क्या कहना है, या आपके माइंड में कोई चीज़ इस वक्त हलचल क्रिएट कर रही है, सो हमसे ज़रूर शेयर करिए. 01157100971 है हमारा, यानी मेरा और आपका रबते का नंबर. इस नंबर के थ्रू आप मुझसे शेयर करिए अपने ख्याल, अपने विचार और इस हवाले से आपका क्या कहना है वह सभी.

लिसनर्स, माहौल हो चुका है काफी हद तक सीरियस। माहौल को करते हैं थोड़ा सा खुशगवार और आपके मूड को भी करते हैं खुशगवार। सो ये लिसनर्स, अभी अभी हमारे एक प्यारे से लिसनर की हमें एक रिक्वेस्ट आई है कि वो चाहते हैं कि हम उनका फेवरेट गाना शो में प्ले करें। सो क्यों नहीं, हम जरूर करेंगे, क्योंकि हमारा मकसद ही यही है कि आपको हम वो चीज़ प्रोवाइड करें जो कि आपके दिन को खूबसूरत बनाए, प्यारा बनाए और साथ ही साथ आपके मूड को अच्छा करे। तो आइए लिसनर्स, मिलकर सुनते हैं ये खूबसूरत ट्रैक। ट्रैक से वापसी पे होती है आपसे मुलाकात। स्टे ट्यून विद अस।

अरे उठो नहीं, उठो नहीं, उठो नहीं, लेटे रहो, लेटे रहो। जो भी हुआ लेकिन तुम यहां बिल्कुल सुरक्षित हो, लेटे रहो।

मुझे उठाकर उसी जगह वापस भेज दूंगा जहां से खरीद कर लाया था एक दिन। तेरी सही जगह वही है, वहां आशिकों की कमी नहीं पड़ेगी तुझे। एक ढूंढेगी हजार मिलेंगे, और वो सब मिलके तेरा इतनी बार इस्तेमाल करेंगे कि दोबारा किसी और से इश्क करने के लायक नहीं रहेगी तू। आज से तू उसी दिन का इंतजार कर।

मैं अल्लाह से कह रही थी कि तुम्हारे अंदर ईमान जगाए, तुम्हें नास्तिक से आस्तिक बनाए। चाहे तुम उसे जिस तरह जिस शक्ल में मानो, मगर मानो जरूर। मैं तो ये चाहती हूँ कि हम दोनों मरने के बाद भी मिले जन्नत में, और जन्नत में वही लोग मिलते हैं जो खुदा को मानते हैं।

सी तो लिसनर्स, अब जरा हमने मोटिवेशनल तो काफी सारी बातें कर ली, अब जरा आगे बढ़ते हैं, शो को आगे बढ़ाते हैं और आप सभी का यानी कि हमारी डीवाज का फेवरेट सेगमेंट स्टार्ट करते हैं। सो जी बढ़ते हैं आगे द स्पाइस किचन की जानिब और हमेशा की तरह आज भी मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए ऐसी मजेदार सी चटपटी सी इंस्टेंट रेसिपीज जो कि बनने में बहुत सिंपल बहुत इजी होंगी। सो हमारे तमाम दर लिसनर्स जो इस वक्त कहीं खोए हुए हैं, किसी डीप थिंकिंग में हैं, या फिर हमारी वो तमाम तर महिला जो इस वक्त तक घर की सफाई कर चुकी हैं, क्लीनिंग का प्रोसेस हो चुका है कंप्लीट, सो जी अब आप रेडी हो जाइए क्योंकि मैं शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ ऐसी मज़ेदार सी चटपटी सी रेसिपीज जो कि बना देंगी आपके इस दिन को मज़ीद खुशगवार। और वैसे भी कहा जाता है कि जब इंसान अच्छा सा खाना खाता है तो उसका मूड ऑटोमेटिकली मजीद अच्छा हो जाता है, और जब आप अपने घर वालों को बना कर दें इतना अच्छा इतना प्यारा खाना, सो कैसे नहीं होगा उनका मूड भी अच्छा। सो जी हमेशा की तरह आज भी हम स्टार्ट करेंगे अपने मेन कोर्स से। सो आज हम बनाने जा रहे हैं आज एक ऐसी रेसिपी जो कि बहुत ही यूनिक है, बहुत कम लोग इसे पसंद करते हैं, लेकिन ट्रस्ट में ये बहुत ही ज़्यादा यमी और डिलिशियस होती है। पता नहीं क्यों मैंने काफ़ी ज़्यादातर देखा है कि 100 में से 90% लोग इसे पसंद करते हैं, लेकिन जो

0: यूके के 10% लोग हैं वो इस फ्यूजन को पसंद नहीं करते, लेकिन फॉर मी इट्स अ रियली गुड, इट्स रियली अमेजिंग. मुझे ये फ्यूजन काफ़ी पसंद है और इट्स लाइक अ कम्फर्ट फूड फॉर मी. सो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने सभी लिसनर्स के साथ भी इस रेसिपी को शेयर किया जाए. सो जी मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स और वो सभी हवातीन जो इस वक्त घरों में मौजूद हैं, अपने कामकाज कर चुकी हैं, काम से फ्री हो चुकी हैं और अब वेट कर रही हैं कि क्या बनाया जाए दिन में. सो आपकी इस समस्या का हल है मेरे पास. सो बिना टाइम वेस्ट किए आप सभी से इंग्रेडिएंट्स को मैं शेयर करती हूँ, लेकिन आप जल्दी से कॉपी पेंसिल रेडी कर लीजिए. अगर तो आपके पास एक प्यारी सी क्यूट सी नोटबुक है तो आप उस पर भी लिख सकते हैं या फिर कोई प्यारी सी डायरी, लेकिन अगर आप वहाँ न सही तो साथ ही साथ रिकॉर्ड कर लीजिए ताकि आपसे कुछ भी मिस आउट ना हो जाए और आप इस मज़ेदार सी रेसिपी को बना सकें. सो शुरुआत करते हैं हमारे देसी कंफर्ट फूड से, ना बिरयानी ना ही सादा पुलाव. आज हम बनाएंगे खुशबूदार कीमा पुलाव. सो ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, लेकिन ट्रस्ट मी अगर आप इसको ट्राई करेंगे तो ये आपको बहुत अच्छा लगेगा. सो जी इंग्रेडिएंट्स आप सभी से शेयर करती हूँ. इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए बासमती चावल 1/2 kg या फिर आप 1 kg यूज़ कर सकते हैं, ये टोटली आपकी चॉइस है आप कितनी क्वांटिटी में बना रही हैं. लेकिन अगर आप 4 से 5 लोगों के लिए बना रही हैं तो 1 kg इज़ अनफ, लेकिन अगर आपके घर के मेम्बर्स हैं थोड़े से कम या फिर आप रहती हैं अकेले और आप खुद के लिए बना रही हैं सो आप 1/2 kg भी यूज़ कर सकती हैं. आपने अच्छे से चावलों को साफ करके भिगो के पानी में रख देना है. इससे क्या होता है कि चावल अच्छे से गल जाते हैं, चावल गलने में ज़्यादा वक्त नहीं लेते और आपको कोई दिक्कत नहीं होती. अब हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है बीफ या फिर मटन कीमा. इट्स टोटली योर चॉइस कि आप क्या ट्राई करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, लेकिन मैं यहाँ आज यूज़ करने जा रही हूँ बीफ कीमा क्योंकि मेरे पास वो अवेलेबल है. सो सेम जितनी क्वांटिटी के आपके चावल होंगे उस हिसाब से आपने उतनी ही क्वांटिटी में कीमा ले लेना है. यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ 1 kg चावल, सो इसमें मैं यूज़ करूँगी 1 kg कीमा.
1: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले.
2: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
3: ओए खुशियाँ मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ.
4: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है.
3: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी.
4: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया.
3: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी.
4: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है.
3: AMH सॉलिसिटर्स. और कौन? ओ वधिया ने दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे. सोने ते स्वागा ए क्यों, हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने.
4: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा.
3: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड न्यू बेसफोर्ड नॉटिंगम.
4: जबरदस्त, मैं उनसे राबता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए. नंबर क्या है?
3: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677. प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी.
5: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

अब इसमें शामिल होंगे प्याज 4 अदद जिन्हें हम बिल्कुल बारीक सा कट करके रख लेंगे, साथ ही साथ टोमेटोज 2-3 अदद इन्हें भी हम अच्छे से कट करके रख लेंगे। हमारा अगला इंग्रेडिएंट है जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 खाने के चम्मच। साथ ही साथ रेसिपी में ऐड होगा योगर्ट 1.5 कप। अब जरा बारी आती है स्पाइसेस की जाने बढ़ने की। सो जी स्पाइसेस में हमारे पास है जी साबित गरम मसाला जिसमें हम 1 दालचीनी, 2 बड़ी इलायची, 4-5 लौंग, 1 चाय का चम्मच ये यूज करेंगे। गरम मसाला बहुत अच्छा होता है, खुशबू का काम करता है, साथ ही साथ एक ऐसा टेस्ट फ्यूजन ऐड कर देता है पुलाव में कि दिल करता है कि इंसान बस खाता चला जाए। अगले हमारे स्पाइसेस हैं लाल मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच, हरी मिर्चें 5-7 अदद, पुदीना थोड़ा सा हल्का सा मुट्ठी भर लेके, और साथ ही साथ नमक हस्बे ज़रूरत हस्बे ज़ायका, और साथ ही कुकिंग ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल। सो इट्स टोटली योर चॉइस कि आप कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं, बासमती घी यूज़ करते हैं या फिर आप ऑलिव ऑयल यूज़ करते हैं। वैसे हेल्थ कॉन्शियस हजरात तो ऑलिव ऑयल की तरफ ही प्रेफर करेंगे, लेकिन ये आपकी अपनी चॉइस है, मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ सिंपल कुकिंग ऑयल। सो दे लिसनर्स, ये थे वो सभी इंग्रेडिएंट जो कि मैंने आप सबसे शेयर कर दिए। अब जरा शो में वक्त हुआ है एक अदद कमर्शियल ब्रेक का। आई नो कमर्शियल ब्रेक पे जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता क्योंकि इतनी अच्छी गपशप हो रही होती है और दिल करता है कि इस गुफ्तगू को मजीद इसी तरह से कंटिन्यू किए रखें, लेकिन कमर्शियल ब्रेक में जाना बहुत ज़रूरी है। सो जी चलते हैं, आगे बढ़ते हैं इस कमर्शियल ब्रेक की जानेब। आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के उस पार, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस।

एक बार फिर से आप सभी की खिदमत में हाजिर हूँ, आप सभी की होस्ट आरजे ज़ैनब फातिमा, और आप सुन रहे हैं द डीवा डायलॉग, जो कि ऑन एयर होता है सिर्फ और सिर्फ रेडियो फजा 97.1 एफएम पे। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आप सभी के साथ गुफ्तगू करते हुए वक्त का बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ और वक्त बिल्कुल तेजी से भागता चला जा रहा है। कुछ इसी तरह होता है आप सभी के साथ भी जब आप किसी ऐसे इंसान के साथ हो जिसके साथ आप इमोशनली इन्वॉल्व हो, आपका दिल उनसे जुड़ा हो, तो बातें करते करते करते वक्त का बिल्कुल पता नहीं चलता और कब मिनट हमारे घंटों में कन्वर्ट हो जाते हैं और घंटे फिर मजीद और घंटों में। सो मेरे साथ भी अक्सर ऐसा होता है कि जब मैं अपने ओल्ड स्कूल ग्रुप से मिलती हूँ, जो कि मेरे एक फ्रेंड्स का ग्रुप है, जब भी हम कभी मिलते हैं सो हम वही पुरानी बातें करते हैं, वो बचपन के किस्से। सो वो सब बातें करते करते करते वक्त का बिल्कुल एहसास नहीं होता, टाइम तेज़ी से भागता चला जाता है और फिर एट द एंड हम यही कहते हैं कि बातें तो अभी बाकी थी लेकिन वक्त हो चुका है ख़त्म। सो वक्त तो फिर कभी भी रुकता नहीं है किसी भी इंसान के लिए, वक्त एक तेज़ गाड़ी है जो कि तेज़ी से रवा दवा रहती है। सो कुछ इसी तरह से मैं भी चाहती हूँ कि आपका और मेरा साथ हो कुछ ऐसे जिसमें आपकी बातें और मेरी गपशप मिलकर हम एक ऐसा फ्यूजन क्रिएट करें कि वक्त का बिल्कुल एहसास ना हो और बातें करते करते करते हमारा वक्त कब अपने इख्तिताम को पहुँचे कुछ पता ना चले।

0: सो डियर लिसनर्स, आइए मिलकर सुनते हैं एक खूबसूरत सा ट्रैक. ये ट्रैक हमारे एक प्यारे से खूबसूरत लिसनर ने हमें रिकमेंड किया था. उनका कहना ये था कि इस खूबसूरत से गाने को शो में शामिल किया जाए. सो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि पूरी कोशिश की जाती है कि डीवा डायलॉग में वो सभी गाने शामिल किए जाएं जो कि हमारे प्यारे प्यारे लिसनर्स को पसंद हो, ताकि आपकी पसंद का भरपूर ख्याल रखा जाए. सो जी, आपकी पसंद का भरपूर ख्याल रखते हुए ही हम ये एक गाना ऐड करने जा रहे हैं. गाना थोड़ा सा इमोशनल है, थोड़ा सा सेंटिमेंटल है, लेकिन आपने बिल्कुल भी इमोशनल नहीं होना और नहायत ही दिल से इस खूबसूरत से ट्रैक को एंजॉय करना है. तो जी लिसनर्स, प्ले करती हूँ ये खूबसूरत ट्रैक. ट्रैक के उस पार होती है आपसे मुलाकात और फिर यही गपशप का सिलसिला तो चलता रहेगा, क्योंकि हम और आप रहने वाले हैं ठीक दो घंटे तक साथ, जिसमें से एक घंटा हो चुका है कंप्लीट, लेकिन अभी एक घंटा बाकी है.
1: हर खूबसूरत चीज में दाग होता है, चांदनी की दाग है, तो फिर ये बगीचा इतना बेदाग क्यों?
2: क्या बात है, चंद ही लफ्जों में मेरे सवाल का जवाब दे दिया तुमने, सारे एक्सपर्ट्स को मात दे दी. यू के
1: आंख में कुछ चला गया है.

0: नायला, वो सिम कार्ड चाहिए था, मेरे बेटे से बात करनी है, प्लीज दिला दो।
1: मम्मा, I'm here.
0: सांझ?
1: I told you ना, अब हम रोड फ्री में बात कर सकते हैं। मैरी आंटी ने प्रिंसिपल से भी परमिशन

So listeners, आइए वहीं से कंटिन्यू करते हैं अपनी इस रेसिपी को. इंग्रेडिएंट्स तो मैंने आप सभी से शेयर कर दिए थे और आई थिंक सो आप सभी ने अब तक नोट कर लिए होंगे. अब जरा आगे बढ़ते हैं प्रोसीजर की जानिब. सो सबसे पहले करना क्या है, करना ये है कि आपने ले लेना है एक बड़ा सा बर्तन या फिर मर्तबान. आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आप कितनी क्वांटिटी बना रही हैं, उस हिसाब से आपने बर्तन का इस्तेमाल करना है. सो सबसे पहले आपने कुकिंग ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेना है. गर्म करने के फौरन बाद साबित गर्म मसाला इसके अंदर शामिल कर देना है. अच्छा, आप जो साबित गर्म मसाला मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स में लिखवाया था वो सब मैं इसमें ऐड कर दूंगी, ठीक है. सो जैसे ही 2 से 3 मिनट में आपका गर्म मसाला खुशबू छोड़ने लगे, सो समझ जाएं कि अब वक्त आ चुका है कि अब आपने रेसिपी में ऐड करने हैं प्याज. अब प्याज को आपने तब तक पकाना है कि जब तक आपका प्याज बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो जाए. याद रखिएगा कि जब भी आप कभी पुलाव बना रहे हों सो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना होता है कि कभी भी ज़्यादा नहीं पकाना. इससे क्या होता है कि जो ओवरऑल लुक है वो डैमेज हो जाती है, चावलों का रंग गाढ़ा हो जाता है और वो दिखने में बिल्कुल भी प्रेजेंटेबल नहीं लगते. सो अगर हल्का गोल्डन ब्राउन प्याज होगा तभी रेसिपी अच्छी बनेगी. सो जैसे ही आपका प्याज हो जाए गोल्डन ब्राउन, आपने इसमें ऐड कर देना है जिंजर गार्लिक पेस्ट और साथ ही आपने शामिल कर देना है कीमा. अब इसे तब तक आपने भूनना है कि जब तक आपके कीमे का रंग बदल जाए. जैसे ही आपको लगे कि आपकी जो रेसिपी है यानी कि आपका कीमा है इसका रंग बदल चुका है, सो अब आप इसमें शामिल कर देंगे ढेर सारे टमाटर जो आपने कट करके रखे थे, योगर्ट, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और साथ ही साथ नमक. अच्छा, नमक को आप अपने टेस्ट बट के अकॉर्डिंग ऐड कर दीजिएगा. अच्छा, मैं यहाँ क्या करती हूँ कि सबसे पहले मैं 2 चम्मच नमक ऐड करती हूँ और फिर मैं टेस्ट करती हूँ. अगर मुझे ऐसा लगे बाद में दमा लगाने से पहले कि नमक थोड़ा कम लग रहा है तो मैं मज़ीद ऐड कर देती हूँ, लेकिन कोशिश यही करती हूँ कि पहले थोड़ा कम रखूँ, क्योंकि अगर अचानक से बहुत ज़्यादा नमक ऐड कर दिया जाए तो उसे निकालना मुश्किल हो जाता है और फिर चांसेस हैं कि रेसिपी स्पॉइल हो सकती है. सो आप भी इसी तरह पहले 2 चम्मच नमक ऐड कर दें और फिर फुल रेसिपी को कम्प्लीट होने दें और आखिर में आप चेक करें कि क्या आपका नमक कम है या ज़्यादा. अच्छा, आप मसाले को अच्छी तरह से भून लें जब तक कि आपका ऑयल बिल्कुल अलग ना हो जाए. जैसे ही ऑयल अलग हो जाए इसमें 2-3 ग्लास पानी ऐड कर दें और कीमे को गलने के लिए छोड़ दें. जब आपको लगे 10 से 15 मिनट के बाद आपका कीमा बिल्कुल पक चुका है तो भिगोए हुए चावल को इसी के अंदर शामिल कर दें और हरी मिर्चें और पुदीना भी काट के डाल दें. जब पानी बिल्कुल खुश्क होने लगे और मज़ीद आप इसमें 4 से 5 कप पानी ऐड कर दें, ठीक है. जब पानी खुश्क होने लगे यानी कि बिल्कुल हल्का हल्का सा रह जाए, सो आंच को करते बिल्कुल स्लो और 15 मिनट के लिए इसे दम पर लगा दें. अच्छा, ये वो प्रोसेस है, ये वो टाइम पीरियड है जहां आपने चेक करना है कि आया आपका नमक बैलेंस है या नहीं. अच्छा, तो अगर आपको लगे कि आपका नमक बैलेंस नहीं है सो इस टाइम पे, इस मोमेंट में आपने मज़ीद थोड़ा सा नमक ऐड कर देना है और लगा देना है दम पे. सो ये लिसनर्स, मज़ेदार सी आपकी रेसिपी हो गई कंप्लीट और ये वो पुलाव है जो कि बहुत ही ज़्यादा गज़ाइत से भरपूर है. कहा जाता है कि कीमे के अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सो लाजमी इसको बनाइएगा, क्योंकि मेरे ख्याल से कि बड़ों को तो इसकी ज़रूरत है ही है लेकिन बच्चों के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा हेल्दी मील है. सो दे लिसनर्स, लास्ट में ट्राई करिएगा इस रेसिपी को और आज ही मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी. और ऐसी मज़ीद मज़े की रेसिपी सीखने के लिए, जानने के लिए आप मुझे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैसेज करके बता सकते हैं कि अच्छा आपको फ़लाँ रेसिपी की सीखनी है या आपको फ़लाँ डिश की रेसिपी चाहिए, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी फेवरेट रेसिपी को लाजमी शो में शामिल करूँ.

तो लिसनर्स, हमने सुना है कि खूबसूरत सा प्यारा सा ट्रैक जो कि मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है. मैंने सोचा कि क्यों ना दो हमने अपने लिसनर्स की पसंद पर लगाए हैं गाने, तो क्यों ना एक गाना अपनी पसंद पर लगाया जाए. सो जी लिसनर्स, इसी के साथ ही शो में वक्त हुआ है एक अदद कमर्शियल ब्रेक का. चलते हैं, आगे बढ़ते हैं इस कमर्शियल ब्रेक की जानिब. आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के उस पार. सो स्टे ट्यून विद अस और सुनते रहिए रेडियो फजा 97.1 FM.

0: It's commercial time.
1: Are you passionate about arts, culture, and making a difference in your community? Breeze Connect is looking for a creative and enthusiastic arts officer to help develop exciting projects, organize cultural events, and engage local communities through the arts. If you're ready to turn your creativity into a rewarding career, we'd love to hear from you. Apply online today by visiting www.breezeconnect.org.uk. Join Breeze Connect and help inspire communities through creativity.
2: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
4: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
4: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
5: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
4: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।

मालूम है कि रेडियो फजा 97.1 FM ही है वो वाहिद प्लेटफॉर्म जहां आपको मिलती है कम्युनिकेशन, एजुकेशन, इंफॉर्मेशन, साथ ही साथ एंटरटेनमेंट. सो हम हर तरह के पैटर्न को फॉलो करते हैं, कुछ बात करते हैं मोटिवेशन की, इंस्पिरेशन की, साथ ही साथ फिर कुछ आपकी बातें सुनी जाती हैं, आपका फीडबैक शामिल किया जाता है और आपकी फेवरेट रिकमेंडीज को भी शो में शामिल किया जाता है और आपके वो सभी फेवरेट ट्रैक्स शो में चलाए जाते हैं जो आप सुनना चाहते हैं. और साथ ही साथ फिर जरा एंटरटेनमेंट की भी बात होती है, जरा शोबिज की दुनिया से और साथ ही साथ म्यूजिक और मस्ती की. सो दी लिसनर्स, अब हमारे शो का वक्त भी अपने इख्तिताम के बहुत करीब पहुंच चुका है. सो जल्दी से आपके साथ आज की लास्ट रेसिपी शेयर करती हूं जो कि है कॉन्टिनेंटल स्वीट. और जब बात की जाए कॉन्टिनेंटल की, सो इससे सिंपल, इससे बेसिक कोई स्वीट हो नहीं सकता. सो आज हम बनाएंगे ब्रेड बटर पुडिंग. अब जरा आते हैं अपने फेवरेट पार्ट की जानिब जो कि है मीठा. मीठा सभी को पसंद होता है एंड आई डोंट थिंक सो कि कोई ऐसा होगा इस दुनिया में जिसको मीठा ना पसंद हो. पर्सनली मुझे मीठा बहुत पसंद है. और जब बात की जाए चॉकलेटी रेसिपीज की, सो सुनते ही एकदम से मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है. सो आज की हमारी रेसिपी भी है कुछ इसी तरह की कि जब आप सुनेंगे तो आपके भी मुंह में जरूर पानी आएगा. सो सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स आप सभी से शेयर करती हूँ. इस रेसिपी को बनाने के लिए आपको चाहिए ब्रेड स्लाइसेस 6 से 8 अदर, बटर हसबे जरूरत इतना बटर आप यूज कर लें कि जितना आप ब्रेड पर इजीली स्प्रेड कर लें. इस रेसिपी में शामिल होगा दूध 2 कप, हैवी क्रीम 1.5 कप यानी 1 फुल कप एंड 1.5 कप, साथ ही साथ शामिल होंगे अंडे 3 अदद और लास्टली बट नॉट द लीस्ट शुगर. शुगर हम यूज करेंगे 1 फुल कप एंड 1.5 कप. अच्छा, इस रेसिपी में टेस्ट को एनहेंस करने के लिए और जो अक्सर हम अंडे वगैरह शामिल करते हैं तो होता है ना कि वो एक हल्की सी स्मेल आ रही होती है, उसको गायब करने के लिए हम यूज करेंगे वनीला एसेंस 1 चाय का चम्मच. किशमिश और बादाम मुट्ठी भर और दालचीनी पाउडर 1 चुटकी. ये तो थे वो सभी इंग्रेडिएंट जो कि मैंने आप सभी से शेयर कर दिए. अब जरा आगे बढ़ते हैं इसके फुल प्रोसीजर की जानिब. सो सबसे पहले हम ब्रेड स्लाइसेस पर अच्छी तरह से ब्रेड स्लाइसेस को ले लेंगे. ठीक है, ब्रेड स्लाइसेस के जो एड्स होते हैं उनको कट कर लेंगे. ठीक है, कट करने के बाद हम उसके ऊपर अच्छे से बटर को स्प्रेड कर देंगे और सब ब्रेड्स को ट्रायंगल शेप में काट लेंगे. अब हम क्या करेंगे, एक बेकिंग डिश को ग्रीस करेंगे और ये ब्रेड स्लाइसेस थोड़े ओवरलैप करके इसके ऊपर सजा देंगे. ऊपर से छिड़क देंगे किशमिश और बादाम. अब साथ ही हम एक और बाउल लेंगे, उसमें हम दूध ऐड करेंगे, साथ ही साथ क्रीम, एग, चीनी और वनीला एसेंस. इन सभी को अच्छी तरह से विस्क कर लेंगे. अब हम इस लिक्विड को ब्रेड के ऊपर डाल देंगे ताकि जो ब्रेड है वो इसके अंदर सोक हो जाए. ऊपर से हल्का सा दालचीनी पाउडर छिड़क देंगे. अब इस डिश को प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्री सेल्सियस पर हम 30-35 मिनट्स के लिए बेक करेंगे. जब तक ऊपर से कस्टर्ड सेट और गोल्डन ब्राउन ना हो जाए. सो जी फाइनली हमारी गर्मा गर्म सी बेक की हुई कॉन्टिनेंटल पुडिंग हो जाएगी तैयार. तो जनाब चटपटे कीमा पुलाव और मजेदार से चटपटे से खाने के बाद जरा अब हसीन ब्रेड और बटर पुडिंग की जानिब हम बढ़े. ये थी हमारी आज की द टीवा डायलॉग की स्पेशल मेन्यू की स्पेशल रेसिपीज. आई होप लिसनर्स आप सभी को ये रेसिपीज बहुत अच्छी लगी होंगी. लाजमी ट्राई करिएगा, बल्कि मैं तो यही कहती हूँ कि आज ही आप इनको ट्राई करें, क्योंकि हम डेली बेसिस के वही सिंपल बोरिंग खाने खा के बोर हो जाते हैं और हमारी जितनी भी डिवाइस हमें सुन रही हैं वो भी ये शिकायत करती हैं कि डेली बेसिस पे क्या खाने में बनाया जाए और क्या किस तरह से न्यू इनोवेशन लेकर आया जाए. सो जी ये दोनों ही रेसिपीज आपकी इस इनोवेशन प्रोसेस को कर देंगी मजीद अपग्रेड, क्योंकि ये काफी ज्यादा यूनिक हैं और काफी कम खाई जाती हैं. सो जी लाजमी ट्राई करिएगा. और 01157100971
ہے آپ کا اور میرا رابطے کا نمبر, یعنی کہ ہمارا اسٹوڈیو کا واٹس ایپ نمبر. اس نمبر کے تو لازمی فیڈ بیک شیئر کریے گا, مجھے آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اور اسی کے ساتھ ہمارے شو کا وقت بھی ہوا اپنے اختتام کے قریب.

0: Turn it up. Radio Faza 97.1 FM.
1: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
2: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड डेंटन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 0759315066। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
3: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
4: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
3: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
4: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
3: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
4: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
3: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
5: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-21-07932।
6: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
7: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
8: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715 2 डबल।
9: यू आर लिस्टिंग।

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। फजल 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से जी मैं हूँ आपकी आरजे दीवरन ओन दी आपकी दोस्त और आपकी होस्ट सलूराज। खुश आमदीद करते हैं, वेलकम करते हैं तमाम सुनती हुई समातों को रेडियो फजल 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लंच बॉक्स लाउंज और आवाज़ आप सुन रहे हैं हमेशा की तरह मेरी। और बताइएगा क्या हाल चाल है, कैसा गुजर रहा है दिन, और दिन का आगाज़ बड़े खूबसूरत खूबसूरत से प्रोग्राम्स के साथ आपके साथ किया जा रहा है, यानी कि हमारी बाकी ट्रांसमिशन भी आपके साथ जुड़े रही है सही सही 2 बजे तक, मतलब 2 घंटे तक मेरा आपका साथ प्रोग्राम में रहेगा। ठीक हो ठीक 12 से 2 बजे तक प्रोग्राम में प्रोवाइड करेंगे आपको इन्फॉर्मेशन मेरी और आपकी, होगी कम्युनिकेशन और होगी मिलकर इंटरटेनमेंट, क्योंकि कुछ ऐसी बातें जो मैं आप तक पहुँचाना चाहती हूँ, कुछ ऐसी बातें जो आप मुझ तक पहुँचाएंगे। भला आप मुझ तक कैसे पहुँचा सकते हैं, हमारे स्टूडियो का लाइव व्हाट्सएप नंबर है, नंबर नोट करवा देती हूँ सबसे पहले 01157100971। इस खूबसूरत नंबर को कीजिएगा सेव, और सेव कर लेने के बाद मुझे व्हाट्सएप पर जाकर मैसेज कीजिएगा और बताइएगा कि आप हमें कहाँ से क्या करते वक्त सुन रहे हैं। ना सिर्फ हमें मैसेज कर सकते हैं बल्कि आप हमारे साथ लाइव कॉल के थ्रू भी प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। कोई पैगाम किसी प्यारे के नाम करवाना चाहें तो वो भी मुझे बता दीजिएगा, या फिर कोई ट्रैक किसी को डेडिकेट करना चाहें तो वो भी मुझे बताइएगा, या कोई ट्रैक आप मुझे डेडिकेट करना चाहें सो मोस्ट वेलकम। वेयर उसी के साथ गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं radiofaza.co.uk की आने वाली पहली वेबसाइट को ओपन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन लेनी हो सो आपको वहाँ से मिल जाएगी कि कौन सा आरजे किस तरह का प्रोग्राम किस टाइम पे करता है। एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से या फिर एप्पल स्टोर से रेडियो फजल 97.1 एफएम के नाम से डाउनलोड करें और हमें ट्यून करें, हमें सुनिए, हमारा साथ दीजिए। बेशक इंटरनेट आपका अपना होना चाहिए, अगर इंटरनेट अपना ना हुआ तो थोड़ी सी बेइज्जती जो है ना फील होती है। मोमन जो है ना वो आजकल जो चीज़ आम हो गई है, जब हम किसी के घर में जाते हैं तो सबसे पहले लोग पहले पानी पूछा जाता था, अभी हम खुद ही जाके मांगते हैं कि भाई वाईफाई का पासवर्ड ज़रा लगा दीजिएगा। तब अब कोई होश नहीं है पानी वगैरह की, अब सिर्फ वाईफाई। इसीलिए कहते हैं कि अपना पैकेज करवा के रखना चाहिए। खैर प्रोग्राम में गपशप का सिलसिला जारी करेंगे, बिल्कुल ओपन करेंगे इस खूबसूरत से लंच बॉक्स को, जिसमें ना सिर्फ खाना होगा बल्कि बहुत सी ऐसी बातें छुपी होंगी जो आपने मेरे लिए संभाल के रखी हैं। यार जाहिर सी बात है 2 घंटे का मेरा आपका साथ होता है, और उसके बाद फिर बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मैं भी आपके लिए संभाल के रखती हूँ। मेरे साथ तो अक्सर ये होता है, मैं आपको पहले भी बता चुकी, वीकेंड पर भी मेरा अक्सर आना जाना हो ना, तो वीकेंड जब आ जाता है तो मेरी यही कोशिश होती है, मतलब जो जो चीज़ें मैं उन दिनों सीखती हूँ, उन दिनों जो जो चीज़ें मैं करती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ आकर, जो जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं वो मैं उनकी हवाले से डिस्कस भी आपके साथ आके करती हूँ। बट प्रोग्राम में जो है वो हमेशा की तरह छोटे से टॉपिक पे डिस्कस की जाती है, और टॉपिक जो है वो मैं शामिल करवाती हूँ प्रोग्राम में। लेकिन मुझे खुशी होगी कि अगर प्रोग्राम में शामिल होकर आप टॉपिक शामिल करवाएं। बट बताइएगा जो लोग ऑफिस की तरफ निकल आए हैं उससे पहले बताइएगा कि कैसा गुजर रहा है दिन। अगर दिन अच्छा नहीं गुजरा तो कोई बात नहीं, आप थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेने, ब्रेक लेने के बाद किसी पार्क में या फिर किसी रेस्टोरेंट में चले जाएं। अगर ब्रेक नहीं भी मिल रही तो आप यूँ कर सकते हैं कि आप चोरी छुपे जो है ना हेडफोन्स लगा के आप मुझे सुन सकते हैं, और प्रोग्राम में अपनी मौजूदगी का एहसास भी दिला सकते हैं। और जो लोग मुझे ड्राइव करते वक्त सुन रहे हैं, बी सेफ, बी केयरफुल, एहतियात से ड्राइव कीजिएगा, और घर बैठिए वतीने मुझे सुन रहे हैं, इनकी तो एक अलग ही लेवल है यार, मतलब ना घर से बाहर निकलना, ना कहीं आना, ना कहीं जाना, तो बस एक ही चीज़ को सोचते रहना कि दोपहर के खाने में क्या बनाया जाए। सो रेसिपी अगर कोई बनवाना चाहे, कोई रेसिपी मुझे पूछना चाहे जो मेरे तरीके से बनाना चाहे तो मुझे लाजमी बताइएगा, अब मैं हल्के से चुपके से प्रोग्राम में उसको शामिल कर दूँगी, या फिर आप ऐसा चाहते हैं कि आपकी बताई हुई रेसिपी को प्रोग्राम में शामिल किया जाए ताकि तमाम लिसनर्स तक वो रेसिपी पहुँच जाए, सो मैं वो भी कर दूँगी। बस उसके लिए आपको ट्यून करके रखना है फजल 97.1 एफएम को एंड ऐप को। बड़े उसी के साथ साथ बताइएगा कि कोई आ जा तो नहीं रहा घर, मतलब मोमो जो है ना वो दोपहर के खाने पे लोग आना जाना शुरू कर देते हैं, तो मुझे बताइएगा अगर कोई ऐसी वैसी बात है, अगर कोई आ जा रहा है तो मैं एक मस्त सी रेसिपी आपको बताऊँगी आज, जिसको बनाने में ना ज़्यादा टाइम लगेगा और ना आप थकेंगे। अब मोमो जो है थकन तो होती ही होती है किसी भी तरह का काम हो, लेकिन वही बात आ गई ना कि मेहमान जो है ना वो अल्लाह ताला की रहमत होते हैं, और मैंने ये उस दिन भी शायद प्रोग्राम में बात शामिल की थी कि मोमिन को खुशी होती है कि जब मेहमान आता है, तो भी जैसे मोमिना बोली थी कि मोमिना को मसला होता है, खाना तो मोमिना ने बनाना होता ना,
बल अगर आपका कोई जानने वाला कोई रिलेटिव घर आ रहा है तो आप ऐसा कीजिए कि अपनी बीवी की हेल्प करें, अपनी वाइफ की हेल्प करें, किसी कोई भी है बहन मतलब जो भी है आप हेल्प करें, क्योंकि जब हम लोग जो है ना आउट ऑफ सिटी आउट ऑफ कंट्री आ जाते हैं तो यहाँ पर आके हमें अपने बहुत से काम खुद ही करने पड़ते हैं, जैसा कि अभी यहाँ पर हम भी करते हैं। मैं भी कभी घर पर मैंने कभी काम नहीं किए, लेकिन यहाँ पर आके मुझे काम भी करने पड़ते हैं। सो इसलिए कहा जाता है कि अपने काम खुद ही करने चाहिए। अभी मुझे सुबह सुबह किसी ने आके लेक्चर दिया कि अपने काम खुद ही करने चाहिए, मतलब क्या यार। कुछ लोग होते हैं ना जिनका मूड मूड होता है, मतलब अपने मूड के हिसाब से बात करेंगे, मूड नहीं होगा तो बात ही नहीं करनी। और अल्लाह ताला ने फिर ऐसा दिल बनाया कि मतलब मेरा तो दिल ऐसा ही है कि मतलब मेरे से किसी से रूडी बिहेवियर में बात नहीं की जाती और ना मैं रूड होकर कभी किसी से बात की है। खैर आइए प्रोग्राम में जो है प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं खूबसूरत से ट्रैक के साथ, और इस ट्रैक के उस पर रहेगी आपसे मुलाकात। सो स्टे ट्यून्ड फॉर 97.1 FM एंड ऐप। मिलते हैं इस ट्रैक के उस पर।

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते भी समातों को रेडियो वजन 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लंच बॉक्स लाउंज, आवाज़ आप सुन रहे हैं सलूराज की। सब उसी के साथ साथ प्रोग्राम में एक प्यारा सा ट्रैक शामिल किया था, प्रोग्राम का आगाज़ किया एक खूबसूरत ट्रैक के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद भी आया होगा। मौसम भी बहुत अच्छा है और मेरी कोशिश यही है कि अपनी आवाज़ को कम कम शामिल किया जाए और प्रोग्राम में चाहे ट्रैक शामिल किया जाए ताकि हम अपने साथ साथ आपको भी इंजॉय करवाएं। यानी कि अपनी आवाज़ तो आपको सुनाते ही रहेंगे लेकिन प्रोग्राम में जो ट्रैक प्ले करने का मज़ा है ना, वो एक अलग ही दुनिया का मज़ा है। ऐसा मैंने कुछ कुछ ट्रैक ऐसे सुने हैं, कुछ कुछ गाने ऐसे सुने हैं जिनको सुनने के बाद एक अलग सी एनर्जी जो है ना जिसम में आ जाती है। आई डोंट नो ऐसा क्यों होता है, लेकिन हर गाने के पीछे कोई ना कोई वजह मौजूद होती है। मैंने अभी रिसेंटली जो है ना तलहान जम का एक इंटरव्यू देखा था और उन्होंने बताया था कि उनको जब एक तरफा मोहब्बत होती है तो वो उस पर गाने बना देते हैं। मतलब टैलेंटेड बंदे दुनिया में हैं, इस चीज़ की कमी नहीं है दुनिया में, लेकिन हमारे अंदर वो चीज़ पता नहीं क्यों नहीं आती। आई डोंट नो, मुझे आइडिया नहीं था कि मैं भी जो हूँ कभी रेडियो पे प्रेजेंटर बन पाऊंगी। मुझे एक्टिंग का बहुत शौक है और उम्मीद करती हूँ कि मुझे इस काम में मैं आगे बढ़ जाऊंगी। बट मैंने जो है ना वो समर अंसारी का इंटरव्यू देखा था कि वो भी जो है ना सबसे पहले एक आरजे ही थी, एक प्रेजेंटर ही थी, और उसके बाद जो है ना उन्होंने मतलब उसके बाद वो फिर एक्टिंग में आई थी। और मैंने अभी इस पर रिसर्च भी करनी थी कि मैंने ये भी सुना था कि वो जो है जब रेडियो ओपन हुआ था तब वो पहली आरजे थी वहाँ पे, मतलब सबसे पहली आरजे वो ही थी। मुझे इस चीज़ का भी उस तरह से आइडिया नहीं है, मैंने इस पर रिसर्च करनी थी लेकिन उसी तरह से फिर टाइम नहीं मिलता और टाइम होता नहीं है, तो फिर वही बात आ गई कि टाइम निकालना पड़ता है क्योंकि ये वो गाड़ी है जो बिना पेट्रोल के चलती है। यानी कि वक्त के साथ जहाँ पर मेरा आपका साथ रहता है ठीक हो ठीक 2 बजे तक, पर प्रोग्राम में गपशप का सिलसिला आपके साथ जारी रखेंगे। अभी के लिए प्रोग्राम में एक और छोटी सी फरमाइश को शामिल करते हैं। एक तो आजकल के जो गाने हैं ना वो भी इतने छोटे छोटे बने हुए हैं कि फ़ौरन से लग के और फ़ौरन से ख़त्म हो जाते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि मैं ट्रैक प्ले करूँ तो कौन सा, बट मेरे पास एक छोटा सा ट्रैक नहीं है, थोड़ा सा मतलब कर लें अलग ही लेवल का, बट आइए उसको सुनते हैं, उसको शामिल करते हैं। बस मुझे उसको रिसर्च करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और मुझे लगता है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैंने इस ट्रैक को काफ़ी देर बाद प्रोग्राम में प्ले करने लगी हूँ और उम्मीद करते हैं कि आपको ये ट्रैक पसंद आएगा। सो वाला ये सुनते हैं इस ट्रैक को। ट्रैक का नाम कुछ इस तरह से है कि मैं नहीं बताऊंगी, आप खुद सुनिएगा और बताइएगा कि आपको ये ट्रैक कैसा लगा। सो स्टे ट्यून्ड 97.1 FM एंड डैप, मिलते हैं इस खूबसूरत से ट्रैक के उस पार।

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। छोटा सा चेक शामिल किया था, चलते रिश्क में पड़ जाते हैं। मैं थोड़ी सी तकरीर करूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी, आप बेफिक्र रहें। अच्छा, कभी कभार जो है ना, आप जब किसी के मुंह से ऐसी वैसी बातें सुनते हैं, मुझे बहुत हंसी आती है। मतलब मैंने कभी उस तरह पंजाबी में ना किसी से उस तरह बात की है, लेकिन अभी रिसेंटली जो है ना, मेरे पास इतने ज़्यादा वर्ड्स पंजाबी के इकट्ठे हो गए कि मेरा दिल करता है कि मैं पंजाबी बोलूँ, लेकिन मुझे उस तरह से बोलनी नहीं आती। फिर मुझे लोगों ने कहना है कि यार जी, आप तो मेरे साथ साथ ही हैं। लेकिन खैर, अब अच्छी बात है, मुझे सुनानी भी चाहिए, मुझे बहुत सी बातें नहीं पता। फिर जो है प्रोग्राम का आगाज़ किया हुआ करतूत नहीं बताने, भाई अपने अपने राज रखना चाहिए। ऊपर वाली चुक्की जो ज़ात है ना, वो भी सबके पर्दे रखती है, तो हमें भी यही कोशिश करनी चाहिए कि हमें सबके पर्दे ही रखने चाहिए। हाँ, वो तो जाहिर सी बात है, लेकिन आजकल की जो दुनिया के लोग हैं ना, वो मतलब मेरे ख्याल में प्रोग्राम में जो है ट्रैक ही प्ले कर देते हैं। ट्रैक इस पर आपसे रहेगी मुलाकात, सो मे भी शायद इसके उस पर मेरा आपको दिमाग एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक ख्याल हो जाए। कमर्शियल ब्रेक के साथ फिर आपके साथ देंगे आके वापसी पर। अभी तक के लिए स्टे ट्यून्ड 107.1 FM एंड ऐप। मिलते हैं इस ट्रैक के उस पर।

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को रेडियो वजन 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। खुश आमदीद करते हैं उन नई समातों को जिन्होंने आज रवि फजल 97.1 एफएम को ट्यून किया प्लस चूज किया। प्रोग्राम में मेरा आपका साथ ठीक और ठीक दो घंटे का रहेगा। बल प्रोग्राम में शामिल होने का तरीका कार बड़ा ही आसान सा है। मैं आपको अपने स्टूडियो का लाइव व्हाट्सएप नंबर नोट करवाए देती हूँ 01157100971। इस खूबसूरत से नंबर कीजिएगा सेफ और सेव कर लेने के बाद मुझे व्हाट्सएप पर जाकर मैसेज कीजिएगा और बताइएगा कि आप हमें कहाँ से क्या करते वक्त सुन रहे हैं। अगर कोई पैगाम किसी प्यारे के नाम करवाना चाहें तो वो भी करवा दीजिएगा, या फिर कोई ट्रैक किसी प्यारे को डेडिकेट करना चाहें, या फिर कोई ट्रैक आप हमें डेडिकेट करना चाहें तो हमें भी कर दीजिएगा। ना सिर्फ मैसेज के थ्रू आप प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, आप लाइव कॉल के थ्रू भी प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। गलत टाइम पे गलत चीज़ लगा दी आपने। प्रोग्राम में जो है मैं आपके साथ गिफ्टों का सिलसिला के जारी करूँगी। अभी के लिए प्रोग्राम में जो है वो एक प्यारे से ट्रैक की फरमाइश मेरे पास मौजूद थी, पर्सनल नंबर पर फरमाइश की गई थी, तो मैं आपसे पर्सनली ये बात कर देती हूँ कि आप मुझे मैसेज करने के बजाय आप स्टूडियो के अलावा व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर आपको इग्नोर नहीं किया जाएगा। खैर, अभी के लिए जो है मैंने आपको बताया था कि मैं कुछ ट्रैक ऐसे प्ले कर देती हूँ जिनको सुनने के बाद फिर लिस्टनर्स की फरमाइश भी उसी तरह की होती है। और मज़े की बात कि मुझे पंजाबी ट्रैक बहुत ज़्यादा कम में समझ आते हैं, और अगर समझ आ दें तो फिर मैं जो है उनको सुनने में मज़ा आता है, और फिर मज़े की बात फिर सब प्ले भी उसी तरह के ट्रैक करवाते हैं, मतलब आपकी मेरी चॉइस काफ़ी मिलती जुलती हो जाती है। सवाल आइए चलते हैं खूबसूरत आवाज़ की जानिब। इस आवाज़ के सफा रहेगी आपसे मुलाकात, अभी तक के लिए कहीं नहीं जाइएगा, जुड़े रहना है फजा के साथ with Saluraj.

ऑल राइट, वंस अगेन वेलकम बैक, खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों के बारे में प्रोग्राम में। तो गाने इतनी जल्दी ख़त्म हो जाते हैं ना कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। वेल प्रोग्राम में जो एक टॉपिक जो है शामिल करवाते हैं हमेशा की तरह, बड़ी खूबसूरत सी बात मेरे सामने अचानक से आई तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको भी प्रोग्राम में शामिल कर दिया जाए कि रिश्ते दिल से बनते हैं बातों से नहीं। कुछ लोग बहुत बातों के बाद भी अपने नहीं होते और कुछ लोग खामोशी से अपने हो जाते हैं। और मेरे ख्याल में ये बात वाकई सही है। मुश्किल टाइम की भी बात की जाए ना तो मुश्किल टाइम में मैंने अपनों को साथ खड़े हुए नहीं देखा, किसी गैर कोई साथ खड़े हुए देखा। और ज़िंदगी में जो है ना, जब आपने किसी जगह पे सर्वाइव करना है, किसी जगह पे ठहरना है, किसी जगह पे रुकना है, तो वहाँ पर आपको किसी एक बंदे पे ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जब तक आप किसी एक शख्स पे उस तरह का यकीन नहीं कर लेते तो मेरे ख्याल में आप उस जगह पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। लेकिन वही बात आ गई कि रिश्ते जो है ना ज़िंदगी में बहुत कम मिलते हैं, और दोस्ती किसी भी तरह का रिश्ता हो सकता है, बट अगर किसी भी तरह की कोई भी अनबन हो जाती है किसी भी रिश्ते में तो उसको इग्नोर करें। अगर आपके लिए इंसान ज़्यादा ज़रूरी है तो आपको बात को इग्नोर करना पड़ेगा, और अगर आपके लिए बात ज़रूरी है तो फिर जाहिर सी बात है इंसान को ही आपको भूलना पड़ेगा। जी बिल्कुल, मेरी कोशिश यही रहती है कि प्रोग्राम में जो बातें मैं समझाऊँ वो आपको समझ में भी आए। ये नहीं कि आपसे मेरी आवाज़ को सुनते रहें और इन्जॉय करके यहाँ से निकलने को हो जाए। पर अगर किसी के साथ किसी भी तरह की बहस होगी और सामने खड़ा इंसान बहुत ही ख़ास है तो चुप करके सुन लेनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हर बात का पलट कर जवाब दिया जाए, क्योंकि कुछ जगह पे कुछ मामलात पे जो है वो खामोशी भी अख्तियार करनी चाहिए। मेरे जो है ना मेरे मैंने किसी की पॉडकास्ट देखी थी, किसी की नहीं बोल सकते भाई, ज़की खान की पॉडकास्ट देखी थी, और ज़की खान ने प्रोग्राम में बात की थी कि पॉडकास्ट में सॉरी बात की थी कि हर जगह पर जवाब नहीं देना चाहिए, कुछ जगह पर जवाब भी होने चाहिए। जी मुझे पता है मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, लेकिन मेरी बकबक जो है ना वो इनके अलावा कोई सुनने वाला भी नहीं है और ना ही आपके अलावा किसी ने सुननी है। तो आप कोशिश यही करें कि मेरी बकबक को जो है ना अपने दिल से लगा कर रखें, क्योंकि सारी उम्र आपको यही सुनने को मिलेगी। चलें सही है, जैसा आपको ठीक लगे, सारी उम्र नहीं सुनेंगे। जब तक वो कहते हैं ना कि सांसों ने वफा की, तब तक आपको अपनी आवाज़ सुनाते रहेंगे, लेकिन कोशिश ये करेंगे। वो कहते हैं ना कभी कभी किसी इंसान की ज़िंदगी से गायब भी हो जाना चाहिए ताकि पता चले कि कोई आपको ढूंढने के लिए वापस आता भी है या नहीं। जो आप बता रहे हैं ना उसमें सीसीडी का कोई काम नहीं है, ये सिर्फ एक पर्सन की बात हो रही है, और कुछ इस तरह से बात की जा रही है कि आपको समझ में आए। आप तो मेरी बातों को मजाक में लिए जाते हैं, बट मेरी बातों को मजाक में बिल्कुल भी नहीं लेना, क्योंकि जब मैं सीरियस हो जाती हूँ ना तो फिर मैं आगे पीछे किसी की भी नहीं सुनती। अम्मा मेरी कहती हैं कि मेरी कुड़ी जड़ी है ना गुस्से दी बड़ी कपत्ती है, तो कोशिश यही करें कि मेरा गुस्सा जो है ना वो आप देखें ही ना। अब वो कहते हैं ना कि हर इंसान के दो चेहरे होते हैं, मतलब मैंने लास्ट टाइम भी ये बात की थी कि सर्दियों में आई थिंक सो मैंने ये बात की थी कि मुश्किल होता होगा ना दो चेहरे उठ के धोना रोज़ाना। अगर इस बात को गहराई में देखा जाए तो ये बात काफ़ी ज़्यादा आगे निकल जाएगी, बट इन्फॉर्मेशन आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे। आप प्रोग्राम में जो बात शामिल करवाई, जो टॉपिक शामिल करवाया, इसके हवाले से अगर डिस्कस आप हमारे साथ करना चाहें, कोई इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंचाना चाहें, तो आप वो भी पहुंचा सकते हैं। प्रोग्राम में आपको हमेशा की तरह प्रोवाइड करते हैं हम इन्फॉर्मेशन, मेरी और आपकी होती है कम्युनिकेशन, और होती है मिलकर इंटरटेनमेंट। सो मेरी अभी रिसेंटली ये कोशिश होने वाली है कि मैं चाहती हूँ कि मैं आपके साथ पंजाबी शो भी करूँ, मतलब थोड़ी थोड़ी पंजाबी बीच में जो है ना वो कर देनी चाहिए बात पंजाबी में भी। मतलब मैनू इंज लगता है जी मैं पंजाबी शुरू कर दी थी तो तुम इतों नाच जाना है, पर मतलब मुझे ऐसा ये भी लगता है कि मेरे मुँह पर शायद पंजाबी सूट भी नहीं करती। बहुत ऐसे लोग होंगे जिनको मैंने पंजाबी बोलते देखा और उनके मुँह बोलते हुए वो अच्छे भी बहुत लगते हैं, लेकिन हाँ लास्ट टाइम मुझे किसी ने बोला था कि आप पंजाबी बोला करें आपको अच्छी लगती है बोलते हुए, और जिसने बोला था वो बंदा मुझे पसंद नहीं था, तो फिर मैंने पंजाबी को जो है ना वो रफा दफा करवा दिया। सवाल प्रोग्राम में किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन लेनी हो कि कौन सा प्रोग्राम किस टाइम पे कौन सा आरजे करता है, सवाल आपको हमारी वेबसाइट से मिल जाएगी radiofaza.co.uk आने वाली पहली वेबसाइट को ओपन कर लीजिएगा। या फिर आप भी अपनी आवाज़ का जादू इस आवाज़ की दुनिया में जगाना चाहते हैं तो आपने करना ये है कि आपने हमारी मार्केटिंग टीम से रब्ता कर लेना है। उसके लिए भी आपको वेबसाइट पे ही जाना पड़ेगा। सुबह उसी के साथ साथ प्रोग्राम में जो है
इस बात को वापसी पर आकर स्टार्ट करते हैं, डिस्कस को शुरू करेंगे, एक छोटे से ट्रैक को प्रोग्राम में शामिल करेंगे। इस ट्रैक इस बार रहेगी आपसे मुलाकात, सो स्टे ट्यून्ड रेडियो फजल 97.1 FM एंड ऐप। मिलते हैं इस खूबसूरत से ट्रैक के उस बार।

0: जी हाँ, तो वन सेकंड वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते भी समातों को रेडियो फजा 97.1 एफएम के लास्ट स्टूडियो से। वाला ट्रैक जो है प्रोग्राम में शामिल किया हुआ था, अभी मेरे पास एक छोटी सी अनाउंसमेंट है और मेरी कोशिश है कि उस अनाउंसमेंट को जो है प्रोग्राम में शामिल कर दूँ। सो आइए सुनते हैं छोटी सी अनाउंसमेंट को, इसके बाद रहेगी आपसे मुलाकात। सो स्टे ट्यून फजा 97.1 एफएम एंड ऐप सुनिएगा और अमल कीजिएगा।
1: Give your children the best protection and prevent over 5,000 deaths each year in England. Childhood infections can cause serious illness, hospitalization, and lifelong disabilities. Childhood infections like measles and whooping cough spread easily in our communities. If your child isn't vaccinated, they're not protected. All childhood vaccinations offered by the NHS have been used in millions of children worldwide and have an excellent safety record. It's important that vaccines are given on time for the best protection. But if your child has missed a vaccine, contact your GP to catch up. Are your child's vaccines up to date? Check their Red Book or speak to their GP practice. For more information, visit nhs.uk/childhoodvaccinations.
0: जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक छोटी सी अनाउंसमेंट शामिल की थी आपके अपने दरमियान चाइल्डहुड वैक्सीनेशन के हवाले से। उम्मीद करती हूँ आपको जो है इस बात की समझ भी आई होगी और इस बात पर अमल भी करना है यकीन जाने। जिसने भी मेरे प्रोग्राम में किसी भी बात पर अमल कर लिया तो मैं समझूंगी कि मेरा प्रोग्राम करने का जो मकसद है वो पूरा हो चुका। लेकिन अभी के लिए जो है ना वो एक छोटी सी मनशुबे खाने लगी है प्रोग्राम में। इस छोटी सी मनशुबे के सवाल रहेगी आपसे मुलाकात। सो स्टे ट्यून रेडियो फजा 97.1 एफएम। मिलते हैं एक ब्रेक के उस पार।

0: बस ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ, और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर, या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: आर्याना सुपरमार्केट, 126132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8 3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। आर्याना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू'ल लव।
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW।
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
9: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
10: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
9: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
10: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
9: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
10: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
9: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG3 5QS।
10: हर दिन को बनाएं स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
9: टेस्ट भी, वाइब भी।

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को रेडियो वजन 97.1 FM के लाइव स्टूडियो से। उसी के साथ साथ स्टूडियो की डाल मशीन पे वक्त हुआ जाता है हमारे अगले घंटे का, यानी कि अगला जो हमारा समय है वो स्टार्ट हो चुका है। लास्ट सेगमेंट में अपना रखती हूँ म्यूजिक का, लेकिन उससे पहले प्रोग्राम में इंफॉर्मेशन आप तक प्रोवाइड की जाती है। एक तो जब ध्यान दो तरफ होना तो फिर आप सही से एक चीज़ भी नहीं कर पाते, लेकिन खैर कोशिश रहेगी कि आपके साथ गपशप का सिलसिला जारी रहे। अभी के लिए जो है मौसम की सूरत हाल को देखकर एक बड़ा ही खूबसूरत ट्रैक लेकर आई हूँ आप सबके लिए। इस ट्रैक को सुनिएगा, इस ट्रैक को इंजॉय कीजिएगा, इसके साथ रहेगी आपसे मुलाकात। सो अभी तक के लिए एक बार फिर से बोलूँगी, कहीं नहीं जाना, जुड़े रहना है फजा के साथ विद सलो राज।

0: जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते हुए नहीं समाता को प्रोग्राम में। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लंच बॉक्स लॉन्च, और मिलकर ओपन करते हैं इस खूबसूरत लंच बॉक्स को, जिसमें ना सिर्फ खाना होता है बल्कि बहुत ही ऐसी बातें छुपी होती हैं जो आपने मुझ तक पहुँचानी होती हैं।
1: बस
0: अभी उसी के साथ साथ जो है ना, मेरे पास एक बड़ी खूबसूरत ट्रैक की फरमाइश मौजूद है, उसको प्रोग्राम में शामिल कर देते हैं। लेकिन वो ट्रैक गया किधर, ये मसले मुझे बड़े महसूस होते हैं कि यार जो ट्रैक ढूंढ के निकाल के रखा हो ना, वो मेरे से प्ले होता ही नहीं है। एक तो चीज़ मिलती बड़ी मुश्किल से है, और अगर मिल जाए तो वो पहले से ही इस्तेमाल हुई होती है। मतलब क्या यार, सवाल प्रोग्रामी कर नौजरा की आवाज़ को शामिल कर चुके हैं। सवाज के इस बारे की आपसे मुलाकात। सो स्टे ट्यून्ड रेडियो फॉर द 97.1 FM एंड ऐप।

ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਹੱਥ ਤੋੜ ਕੇ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਆ।

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को रेडियो फजल 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लंच बॉक्स टाउन, जो आप सुन रहे हैं सलोराज की सुलसी के साथ। प्रोग्राम में जो है अगला सेगमेंट हमारा स्टार्ट हो चुका है, यानी कि लास्ट सेगमेंट में रखा ही होता है म्यूजिक का। म्यूजिक के वाले डिस्कस भी करते हैं, और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ट्रैक के पीछे कोई ना कोई कहानी जरूर छुपी होती है, लेकिन उन ट्रैक्स को लेकर अपनी जिंदगी को मत गुजारें, क्योंकि शहजादे जो है ना वो सिर्फ ख्वाबों में मिलते हैं, असल हकीकत में ऐसा कोई भी नहीं होता। और सबसे बड़ी बात, लड़कियों को अपनी ज़िंदगी की जंग खुद ही लड़नी पड़ती है, कोई दूसरा तीसरा आके बीच में इन्वॉल्व नहीं होता। सो प्रोग्राम का आगाज़ नहीं बल्कि सेगमेंट का आगाज़ करेंगे गुरु रंधावा की आवाज़ में। सो उम्मीद करती हूँ कि आपको ट्रैक पसंद आएगा। अब मेरी ज़ुबान पे जो भी ट्रैक आ जाता ना, तो मैं उसको लेकर प्रोग्राम में शामिल कर देती हूँ। बस आइए सुनते हैं इस ट्रैक इस बारे की आपसे मुलाकात। सो स्टे ट्यून्ड फॉर 97.1 FM एंड डैफ।

0: Carnival, the last ride.
1: जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को रेडियो 97.1 एफएम के लास्ट स्टूडियो से। एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ प्रोग्राम में लास्ट इवन हमारा म्यूजिक का होता है, इसी लिहाज से जो है म्यूजिक भी प्ले की, म्यूजिक ही प्ले किए जा रहे हैं प्रोग्राम में। अभी मेरे पास फरमाइश थी एक ट्रैक की, लेकिन उससे पहले मेरे पास इसकी भी फरमाइश थी, तो मैंने सोचा इसको क्यों ना बैकग्राउंड म्यूजिक बना के बीजीएम बना के इसको यूज कर लिया जाए, साथ में आप इसको भी सुनते रहें, साथ साथ हमारी आवाज़ को भी सुनते रहें। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का साथ अच्छा लगा होगा। प्रोग्राम में कोई मेरे से गलती होगी हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा, माजरत बड़पन का मुजाहरा कीजिएगा। वो कहते हैं ना कि माफ़ करने वाला इंसान जो है ना वो बड़ा होता है। सो उसी के साथ साथ इस ट्रैक को सुनेंगे मेरे ख्याल में इसके उस पार, फिर आपसे चाहेंगे इजाज़त। अभी तक के लिए स्टे ट्यून्ड 97.1 एफएम एंड मिलते हैं इस ट्रैक के उस पार।

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते भी समातों को रेडियो 97.1 एफएम के लास्ट स्टूडियो से। प्रोग्राम आप सुने हैं बुक्स ऑन वाज अफ नसर राज की सुलसी के साथ साथ। अब बुक्स हो जाता है ख़त्म। अब आपको मुझे देनी होगी इजाज़त। कल तक के लिए आप अपने प्यारों का और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। छोड़ जाती हूँ एक और खूबसूरत ट्रैक के साथ, एक और खूबसूरत फरमाइश के साथ। सो फाइनली आई एम गोइंग। सो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगेवान।

0: Sarigama Karva, the perfect gift for your loved ones.
1: तू लव करती है ना मेरे से?
2: बस लव है तो सब है।

0: आंखों से सजदे कर गए, ख्वाबों से तेरे जुड़।
1: You are listening 97.1 FM.

0: It's commercial time.
1: हेलो सुमान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: आर्याना सुपरमार्केट, 126132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8 3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। आर्याना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू'ल लव।
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioche straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.
11: मोहब्बतों में शुमार कैसा, यकीन कैसा, गुमान कैसा, सवाल कैसा, जवाब कैसा, अरूज कैसा, जवाल कैसा, मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में हिसाब कैसा। इन्हीं मोहब्बतों को समेटे हुए हम हैं आपके साथ
12: 97.1 FM।
13: Hits.
14: Music never sounded better.
15: Fazan 97.1 FM.
16: I love it.
17: I'm at a payphone.
10: You are listening 97.1 FM.

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Huzzah 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 90s।
6: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
7: Are you an experienced marketing

0: commercial time.
1: Are you passionate about arts, culture, and making a difference in your community? Breeze Connect is looking for a creative and enthusiastic arts officer to help develop exciting projects, organize cultural events, and engage local communities through the arts. If you're ready to turn your creativity into a rewarding career, we'd love to hear from you. Apply online today by visiting www.breezeconnect.org.uk. Join Breeze Connect and help inspire communities through creativity.
2: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
4: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
4: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
5: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्क टॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
5: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
6: दिस इज अ पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट।
7: द स्टेशन
8: दैट प्लेज फुट टैपिंग म्यूजिक।
9: हजार 97.1 FM।
10: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन। सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें राया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, राया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ रोजाना टाइम

0: सुबह 9:30 से रात 10:30 तक विजिट करें 136-138 अल्फ्रेड डेंकिन रोड नॉटिंघम या अभी रब्ता करें 0759315066 9। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
0: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-21-07932।
4: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
6: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी रابطہ करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715।
7: यू आर लिस्टिंग 97.1 FM।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-21-07932।
4: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप
6: जी? मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में?

0: या फिर ऑफिस में।
1: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
0: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
1: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
0: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
2: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
1: Park Foods, जो नाम है मायार का।
3: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser. Students Learning and Skills Academy.
4: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
5: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
4: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
5: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
4: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
5: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
4: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
5: हर दिन को बनाएं स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
4: टेस्ट भी वाइब भी।
6: You are listening 97.1 FM.

0: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सस्रीअकाल। फजा 97.1 FM नॉटिंघम के लाइव स्टूडियो से मैं हूं आपके साथ, आपका मेजबान, आपका होस्ट एंड आपका दोस्त उस्मान खान। वेलकम, खुश आमदे जी आयन उस्ताद, बिस्मिल्ला पखैर रागले अस्ता लविस्ता। उम्मीद वासी का जी जहाँ जिस हाल में होगा, खुशबाश होकर अपनी जिंदगी को बेहतर से बेहतरीन बनाने की तगड़ों में मशगूल होगा और होना भी चाहिए, क्योंकि एक ही जिंदगी है, इसको कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। बहरहाल आपके साथ आपका मेजबान उस्मान खान प्रोग्राम ड्राइव टाइम में आने वाले तमाम तर मौजूद मेहमानों को खुश आमदेद के साथ साथ ये भी बताना जरूरी समझता है कि आपने न सिर्फ खामोशी से मेरा प्रोग्राम सुनना है बल्कि उसके साथ साथ मेरा साथ भी देना है। प्रोग्राम में साथ देने का तरीकाकार बहुत ही आसान और वही पुराना जो आप लोगों को अब तक तो अजबर हो चुका होगा। जिन लोगों को नहीं पता, आज पहली बार फजा 97.1 FM या डैप पर हमें ट्यून किया है, आप तमाम लोगों का तहे दिल से मशगूल हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आज के प्रोग्राम में आप लोग भरपूर तरीके से मेरा साथ देंगे। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए 01157100971 पे व्हाट्सएप पर मैसेज या चाहें तो कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप तक हमारे रेडियो की ट्रांसमिशन ठीक से नहीं पहुंच पा रही तो आप हमारा साथ दे सकते हैं लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू। गूगल पर जाइएगा और सर्च कीजिएगा radiofaza.co.uk, आने वाली पहली वेबसाइट पर क्लिक कीजिएगा और मुझे लाइव सुन लीजिएगा। इसके अलावा एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं रेडियो फजा 97.1 FM के नाम से, प्ले स्टोर या फिर एप्पल स्टोर, दोनों जगहों पर अवेलेबल है। चौथा और सबसे आसान तरीका हमारे जनाब, अगर आप मुझे ड्राइव करते हुए सुन रहे हैं तो आप फजा डैप पर मुझे ट्यून कर सकते हैं। आज के प्रोग्राम में भी हमेशा की तरह मैं अकेला ही नहीं हूं बल्कि मेरे साथ एक अद्भुत खूबसूरत सी पर्सनैलिटी, जबरदस्त आवाज, खूबसूरत सा अंदाज, प्यारे से बाल, मोटी मोटी आंखें, मैं बात कर रहा हूं अपनी। मेरे साथ जो शख्स मौजूद है, बेहतर है कि वो अपनी तारीफ खुद ही करेंगे। जी हाँ, हमारे साथ कौन मौजूद है?
1: अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल और एक प्यार भरा सलाम मेरे तमाम सुनने वालों के नाम। मैं हूं आरजे मौजम और आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM एंड डैब। इस वक्त आप लाइव स्टूडियो से आप जहां कहीं भी हैं, जिस हाल में भी हैं, उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे और मौसम के हाल चाल को भी जानते हुए आपको कहना चाहूंगा कि
0: अच्छा, वैसे मौसम की सूरत हाल के मुतालिक तो हम ज़रूर मौसम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले पहले मेरा ख्याल है कि अपने तमाम तर सुनते हुए समाधों को ये बता दें कि आपने हमारा साथ देने के साथ साथ अगर आप चाहें तो हम आपके लिए मज़ेदार किस्म के ट्रैक्स भी शामिल करेंगे, वो ट्रैक्स जो मौसम की मुनासिबत से भी हों और साथ साथ आपके फेवरेट भी हों। मोस्टली ऐसा होता है कि मौसम की मुनासिबत से कम ही लोगों को गाने पसंद आते हैं। हम लोगों की प्लेलिस्ट इतनी थकी हुई, इतनी पुरानी हो चुकी है कि अब हमें वो मौसम की मुनासिबत से वो सॉन्ग्स हमें समझ में नहीं आते।
1: नहीं नहीं सर, इस तरह कोई बात नहीं है। आज हमारी फरमाइशें कुछ इस तरह की हैं कि आप अगर मैं आपको बताता चलूं और अपने सुनने वालों को बताता चलूं कि हमारी जो मैंने जो लास्ट अभी लाइव शो फर्स्ट शो अपना किया था तो मुझे उम्मीद नहीं थी, उम्मीद से ज़्यादा ही खैर लोगों ने पसंद किया है। आप लोगों का शुक्रिया जिन्होंने मुझे सुना और मुझे बर्दाश्त किया। खैर जी, बर्दाश्त तो करना पड़ता है जी, स्टार्टअप में हर एक कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ होती है कि जो आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आपको कुछ ना कुछ उसमें वीकनेस होती है, आवाज़ में भी वीकनेस होती है। इसके अलावा अगर मैं बात कर रहा था सॉन्ग्स की तो मुझे लगता है कि मौसम को देखते हुए आज मोहब्बत बरसा देना तो स्पेशल आया है ये ऑडियंस की तरफ से।
0: अच्छा, फरमाइशें आना शुरू हो गई हैं, वाह ज़बरदस्त हो गया। वैसे हर जगह पे चूंकि एक जैसा मौसम तो है नहीं, किसी जगह पे बारिश है और किसी जगह पे बारिश नहीं है, कुछ लोग जो हैं वो सर्दी से महफूज और कुछ लोग गर्मी की तरफ हैं। बहरहाल जी, ये तमाम तर चीज़ें तो हम साथ साथ लेकर चलेंगे। मौसम ने हमसे जिस गाने की फरमाइश कर दी है, मौसम जिसकी तरफ से भी आपको ये फरमाइश है, मेरा ख्याल है कुछ समवन स्पेशल ही होगा।
1: समवन स्पेशल तो नहीं कह सकते, ये रैंडम ही मैंने अभी अपनी देख रहा था, मैसेजेस देख रहा था तो उन्होंने स्पेशल कहा है कि मौसम की मुनासिबत को देखते हुए आप ज़रूर ये सॉन्ग प्ले कीजिएगा। और ये सॉन्ग उनको डेडिकेट करते हैं जी, और प्ले करते हैं ये सॉन्ग्स। और इसके अलावा अगर आपकी कोई कोई डिमांड है या आपको कोई किसी स्पेशल वन को भी कोई इस तरह का गाना कोई डेडिकेट करना चाहते हैं तो आप ज़रूर हमें एक मैसेज कीजिए, और मैसेज करने का तरीका वही पुराना, व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। मैसेज करने के लिए अगर जो नए हैं उनके लिए नंबर नोट कर लीजिए 0115710091। इस पर अपना शहर का नाम, अपना नाम और अपने चाहने वालों के लिए जो पैगाम, जो भी पैगाम हुआ आप लिख कर भेज दीजिए। जो सॉन्ग किसी के लिए चलवाना हो वो भी बता दीजिए और सुनते हैं एक प्यारा प्यारा सॉन्ग।
0: जी हाँ बिल्कुल, एक प्यारा सा सॉन्ग सुनते हैं। सावन आया है, उम्मीद है कि आपको ज़रूर अच्छा लगेगा, लेकिन अगर इसको मैं सिंपल वाला शामिल करता तो वो थोड़ा सा बोरियत की तरफ चला जाता है, इसलिए हम इसको रिमिक्स में शामिल कर रहे हैं। उम्मीद है कि आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। अरिजीत सिंह की आवाज़, इस आवाज़ को इस बार होगी आपसे फिर से मुलाकात। डोंट गो एनीवेयर, रहिएगा हमारे साथ साथ।

वेल जी, वेलकम बैक। मैं हूँ आरजे मौजूम और आप सुन रहे हैं फजल 97.1 FM लाइव फ्रॉम नॉटिंघम। अच्छा, ये मुझे ये बताना कि आपको ये सॉन्ग कैसा लगा और ये किस किस के लिए ये पुरानी एक याद था, या किस किस का ये फेवरेट सॉन्ग था, किस किस ने इसको अपने गाड़ी में प्ले किया, या किस किस ने ये कभी अपने फ़ोन में लगा के रेगुलर सुनते थे। कह सकते हैं कि ये कुछ लोगों के लिए फेवरेट होगा या कुछ लोगों के ये बोरियत वाला सॉन्ग होगा। कुछ दिल टूटे दिल जले भी लोग होते हैं जिनके लिए ये मसला बन जाता है कि यार ये क्या प्ले कर दिया। कुछ लोगों को रोना दोनों पसंद ज़्यादा होता है। हर इस सॉन्ग से याद आया कि हम ऐसी कुछ यादें होती हैं जिस तरह छोटी छोटी यादें होती हैं, पर वो छोटी छोटी बातें होती हैं, पर वो कुछ ऐसी यादें बन जाती हैं कि ज़िंदगी में जब कभी भी बाद में वो दोबारा हमारे सामने आए तो या सुनने को मिले तो बंदा सोचता है कि यार ये, हाँ ये मेरे साथ भी हुआ था या ये याद मेरी थी। जिस तरह के कोई ऐसा दोस्त या कोई ऐसी बात जो आपको कभी भी ना भूले, या जब कभी आपके सामने किसी दूसरे की तरफ से वो बात कही जाए तो आप कहें कि हाँ ये साथ मेरे साथ भी हुआ था। मैं बात करना चाह रहा हूँ कि ऐसी छोटी छोटी बातें जैसे कि माँ की दुआ, माँ की वो कहना कि सुबह नाश्ते के लिए उठ जाओ, या किसी दोस्त का रोज़ मैसेज करना, रोज़ हाई करना, या कॉलेज की बात करें या स्टूडेंट लाइफ की बात करें तो ऐसे कुछ दोस्त होते हैं जिनको हम डेली बातें करते हैं, डेली गपशप होती है।

0: बस माँ के प्यार से याद आया कि मैं ऐसा भी कहना चाहूँगा कि कुछ ऐसे हमारी तरह बंदे होंगे जिनकी सुनने वाले इस दुनिया में इस वक्त नहीं होंगे या उनसे दूर होंगे, हमारी तरह परदेसी होंगे, जो मुझे इस वक्त ड्राइव करते हुए सुन रहे हैं, उनको भी मैं कहना चाहूँगा कि आपको अभी जब भी कभी इस तरह की कोई याद हो तो आपने ये चीज़ ज़रूर सोचनी है कि आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और आपको कोई भी चाहने वाला आपको का घर में आपके इंतज़ार कर रहा है। और ये क्वेश्चन मैं आपसे भी करना चाहूँगा कि ज़िंदगी में आपने ऐसी कौन सी छोटी छोटी बातें हैं जो आपने कभी की हैं और आपको वो चीज़ चाहिए कि आपको ज़रूरत है कि वो हाँ यार ये बात मैंने है और अपना आप मैसेज हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं कि ये बात हमने हमारी ज़िंदगी में हुई थी। जैसे कि हमें याद आता है कि माँ वो बचपन में माँ का कहना कि उठो रेडी हो जाओ कॉलेज के लिए स्कूल के लिए रेडी हो जाओ, या माँ की वो डांट या बाप की वो डांट जो हमें याद दिलाती है अपने बचपन की, या वो दोस्तों की गपशप, वो उठना बैठना, वो घूमना फिरना जो हम अब अपनी इस मसरूफ़ लाइफ से पहले हम कॉलेज लाइफ में या वैसे जब छोटे थे तो हम लोग ये फ्री टाइम में हम घूमते थे, फिरते थे, उठते थे, बैठते थे, गाते थे, फिरते थे, गपशप करते थे, मस्तियाँ करते थे। ये चीज़ हर एक के साथ होती है, मुझे पता है हर एक की ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसी बात होती है कि जो बंदा कहता है कि हाँ ये मेरे साथ हुआ था। तो आप अपनी बात ये हमारे साथ ज़रूर शेयर करें या अपने किसी स्पेशल वन की कोई ऐसी याद या कोई ऐसी लम्हा जो आपके ज़िंदगी में एक खास हैसियत रखता हो तो वो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। शेयर करने का तरीका वही पुराना।
1: It's commercial time.
2: हर बार की तरह इस बार पाकिस्तान फोरम नॉटिंगम लेकर आया आपके लिए नादरा सर्जरी। अगर आपका नाइक कॉप एक्सपायर होने को है या आप नया अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर विजिट कीजिए ना चैपल हाउस नॉयल स्ट्रीट नॉटिंगम ND7680 ऑन संडे 2nd August 2026 फ्रॉम 10 AM to 2 PM। मजीद मालूम के लिए अभी विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट pakistanforum.co.uk। टू बुक एन अपॉइंटमेंट प्लीज कॉल 07802988615। Only a limited number of slots available.
3: Are you highly organized with excellent leadership and administration skills? Breeze Connect is looking for an experienced office manager to oversee daily operations, support our growing team, and help keep our organization running efficiently. If you're a motivated professional who enjoys making things happen, we'd love to hear from you. Apply online today by visiting www.breezeconnect.org.uk. Join Breeze Connect and grow your career with us.
4: What happened? You look very happy.
5: I have some fantastic news. My wife's got her visa.
4: Congratulations. That was very quick.
5: I was very lucky. I used the local visa experts.
4: Who helped you with the application?
5: AMH solicitors. They were brilliant, friendly, fast and very responsive. And best of all, they deal with all sorts of visas, extensions, indefinite leave to remain and citizenship applications.
4: Where is AMH solicitors based?
5: Nottingham Road, New Basford, Nottingham.
4: Brilliant. I will contact them to help my family's visa.
5: Sure, their number is 0115 671 3677 and they are in Pure Gym building, so parking is available, and they also offer free initial consultation.
6: AMH solicitors, immigration lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115 671 3677.

वेल जी, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं फजल 97.1 विद आरजी मौसम, प्रोग्राम ड्राइव टाइम। बात हो रही थी एक रिश्तों की और पुरानी यादों की। इसमें ऐड करता जाऊं कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आप लोग जिंदगी कभी नहीं भूलते। इसमें मैं अपनी एक एक्सपीरियंस शेयर करता जाऊं कि जब कभी मैं कभी फ्री में होता हूं, आवाज़ लट खड़ा रही है पर आपने घबराना नहीं है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको एंटरटेन करूं, आपका दिन अच्छा गुजरा है, उम्मीद करता हूं आपका दिन अच्छा गुजरा होगा। कुछ लोग इस वक्त ऑफिस से घर जाते हुए मुझे सुन रहे हैं, कुछ लोग जॉगिंग करते हुए मुझे सुन रहे हैं, या कुछ लोग घर बैठे हुए सुन रहे हैं। आप लोगों का मूड खराब नहीं करना चाहूंगा और आप जैसे ही एक चलने वालों के नाम एक मैं सॉन्ग करना चाहूँगा। सॉन्ग का नाम है बोल दो ना ज़रा। आप सोच रहे होंगे कि ये इतना रोमांटिक क्यों है। रोमांटिक न्यूज़ ही बस काम ही ऐसे हैं।

तो सुनते हैं बोल दो ना ज़रा, और इसके बाद हम अपनी राय शामिल करेंगे कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा कौन सा लम्हा है, और आप अपने मैसेजेस ज़रूर भेजें। तब तक मैं देखता हूँ कि आप में से कौन कौन मुझे मैसेजेस भेजता है, कि अपने लम्हात शेयर करता है। तो सुनते हैं, आपका वक्त ज़ाया नहीं करते, सुनते हैं बोल दो ना ज़रा।

अच्छा जी, वेलकम बैक। मैं हूँ आरजे मोजन और आप सुन रहे हैं फजल 97.1 एफएम लाइव फ्रॉम नॉटिंघम। आप सुन रहे थे गाना बोल दो ना ज़रा, और ये गाना हमने बस वैसे ही मूड बना था कि आशिकाना मूड है जी, आशिकाना भी है और गमगीन भी है कभी कभी। दिल कर रहा था कि आप स्लो वार्ड में सुना जाए, तो आपने सुना। बस आपने भी किसी स्पेशल वन का अभी नाम लेके हमें बताना है कि किसको बोल दो ना ज़रा। बस ये ध्यान में रखना है कि स्पेशल वन एक ही हो, ये ना हो कि दो स्पेशल वन दोनों एक टाइम पे आपके मैसेजेस एक ही वक्त में सुन लें। मैं आपका नाम लूँ और स्पेशल वन का नाम लूँ और पता लगे कि अगले दिन आपने मैसेज किया है कि मेरा दूसरा स्पेशल वन के नाम एक और सॉन्ग कर दो, जो कि होगा कोई ना कोई सैड सॉन्ग। खैर जी, ये बातें तो होती रहेंगी। बात कर रहे थे हम दोस्तों पे, दोस्तों के हवाले से मैं बात करना चाहूँगा कि दोस्ती तो एक ऐसी चीज़ है कि आप जहाँ भी हों, जिस साल में भी हों, दोस्ती आप नहीं बोलते। या कुछ ऐसी हंसी मजाक होता है दोस्तों का कि जो आप सोच रहे होते हैं कि यार हाँ यार ये तो बात है थी, ये बात उसमें थी, जो मुझे ऐसी शरारत कुछ होती है जो दोस्तों ने मिल के की होती है, या ऐसी कोई काम होते हैं, ऐसे कोई काम होते हैं या ऐसे कोई ना कोई चीज़ होती है जो आपने कॉलेज के टाइम पे की होती है, या आपको वो चीज़ जब आप बाद में सुनते हैं या अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी में से वो सोचते हैं तो आप कहते हैं हाँ ये बात तो है थी। अगर आप ये अपनी ज़िंदगी में ऐसा कोई छोटा सा लम्हा जीना चाहते हैं तो वो कौन सा होगा हमें ज़रूर बताइएगा। बताने का ज़रिया वही है पुराना, लाइव मैसेजेस पे आप हमें अपना शहर का नाम, अपना नाम और अपना मैसेजेस हमें भेज सकते हैं। मैसेज करने का तरीका ये है कि आप हमारे व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 0115710091। इस पर आपने अपना प्यारा नाम और शहर का नाम और अपना प्यारा सा मैसेज भेज देना है, और बंदा ना चीज़ आपके लिए हाजिर है और आपका ऑन एयर जहाँ तक हो सका, जाहिर सी बात है गिवन टाइम होता है और सबकी डिमांडें भी पूरी करनी होती हैं, तो जिस जिसका मैसेज हम कोशिश करते हैं कि सबके मैसेज शामिल करें, और अगले सेगमेंट में मैं शामिल करूँगा। और इस प्यारे प्यारे मौसम में प्यारी प्यारी बातें होंगी और प्यारे प्यारे लोगों के नाम, प्यारे प्यारे सॉन्ग डेडिकेट होंगे।

चलते हैं आपने नेक्स्ट सॉन्ग की तरफ, और सॉन्ग है तेरे संग यारा। आज असल में मौसम भी नॉटिंगम का क्लाउडी है, सॉरी क्लाउडी निकल गया, क्लाउडी है। तो मौसम को मद्देनजर रखते हुए ये कहना चाहूँगा कि आप अपनी अगर कार ड्राइव कर रहे हैं तो विंडो डाउन और वॉल्यूम अप, और अगर आप घर में हैं तो तब भी अपना वॉल्यूम ऑन थोड़ा सा बढ़ा लीजिए।

है तो ये सॉन्ग स्लो वर्म में असल में हर एक बंदे का टेस्ट होता है। अगर आपको स्लो वर्म में पसंद नहीं है तो अगर आप कहेंगे या आपका मैसेजेस में आप बता सकते हैं कि ये वर्जन आपको पसंद नहीं है, तो मैं आपको लिए कुछ और वर्जन भी प्ले कर सकता हूँ। आपका टाइम ज़ाया नहीं करते, सुनते हैं तेरे संग यारा।

वेलकम बैक जी, मैं हूँ आरजे मौसम और आप सुन रहे हैं फजल 97.1 एफएम एंड डैब। गानों का सिलसिला तो साथ साथ जारी है और आपके मैसेजेस भी आ रहे हैं। मैसेजेस शामिल करते हैं मिस अलीना लिखती हैं कि आपका शो बहुत अच्छा है, आपकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है और आप एज अ न्यू ज्वाइनर हैं, आपको वेलकम। और मैं आप इस फजा 97.1 की रेगुलर लिसनर हूँ जी, थैंक यू आपकी तारीफ का। आप लिखती हैं कि जो जो सॉन्ग आप चला रहे हैं, पर आपने एक सॉन्ग हमारे लिए नहीं चलाया, फॉर माई स्पेशल वन। स्पेशल वन का नाम तो लिख देती। हर ये और भी मैसेजेस का सिलसिला जारी है और इनका जो भी इनका सॉन्ग है वो हम आने वाले कुछ देर बाद चलाएंगे। मैं इसलिए कहता हूँ कि रेडियो सिर्फ सुनना नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है। और एक आरजे की सबसे बड़ी खुशी की बात यही है कि आप अपनी मसरूफ ज़िंदगी से कुछ टाइम हमें देते हैं। जी बिल्कुल, यही एक हमारे लिए एक बड़ी खुशी है क्योंकि हम एक दूसरे को देख नहीं सकते, जस्ट सुन सकते हैं। और आप एक आवाज़ ही है जो एक दूसरे को ही हम महसूस कर सकते हैं, एक दूसरे की नहीं सिर्फ मेरी। बात हो रही थी दोस्ती पर। कभी आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि आपने ऐसा कोई पुराना दोस्त, कोई बहुत ही पुराना दोस्त हो जो आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट में हो और या आप उसको इस वजह से मैसेज नहीं करते कि पता नहीं ये जवाब देगा या पहचानेगा या नहीं पहचानेगा। कभी आपने ये एक्सपीरियंस किया कि उसको एक हाय लिखें या आप उसको ये लिखें कि कैसे हो या क्या हाल है, मैं आपकी याद आई तो मैंने सुना कि सोचा कि मैसेज कर लूँ या आपका हाल चाल पूछ लूँ। ये छोटी सी बात एक बड़ी ही लुत्फानंदोज होने वाली बात है। बात इस तरह है कि अगर आप किसी का कोई ऐसे वो दोस्त होते हैं जिनके बगैर हमारा दिन नहीं गुजरता, दिन में हो सकता है कि हम 10 बार बातें करते हों पर अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी में या अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे हम मसरूफ़ हो गए हैं कि आप उनके लिए वक्त ही नहीं निकाल पाते और वो आप जस्ट एक कॉन्टेक्ट लिस्ट में एक नाम से बस सेव होता है। तो जब आप उसको मैसेज करेंगे या कोई उसको आप ये कह के मैसेज करेंगे कि मुझे आपकी याद आई थी, तो उसके भी दिल में कोई एक खुशी की लहर पैदा होगी और उसके दिल में भी ये आएगा, हाँ यार ये बंदा भी फलां टाइम पे मेरा दोस्त था और फलां जगह हमने बैठ के गपशप की है, खाया पिया है, उठाए बैठे हैं, घूमे हैं, फिरे हैं। अगर आपकी लिस्ट में भी कोई ऐसा नंबर है तो उसको ज़रूर मैसेज कीजिए और मैसेज करके जो उसका रिप्लाई है उसको हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। शेयर करने का वही पुराना तरीका है, हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा क्योंकि रेडियो सिर्फ ये एक महफिल है। ये एक कह सकते हैं कि ये एक महफ़िल की तरह है जहाँ हर दिल गाता है, हर एक दिल अपनी बातें शेयर करता है। और आपको भी चाहिए कि हमारे साथ रहें और रेगुलर रहें और हमारे साथ अपनी बातें शेयर करें। क्योंकि अब ये बातें ही होती हैं कि इंसान एक अपने दिल की बात एक दूसरे से अगर शेयर करता है तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि आप एक को इस काबिल समझते हैं या इस काबिल समझते हैं या इस लायक समझते हैं, ये कह सकते हैं कि इस लायक समझते हैं कि आप उसको अपने दिल की बात कह सकें। चलें बातें तो होती रहेंगी और अब एक सॉन्ग शामिल करने का वक्त हुआ जाता है और सॉन्ग के बाद शामिल करेंगे आपके मैसेजेस। और मैसेजेस पे आपने ज़रूर ये शेयर करना है कि आपने किसको मैसेज किया और उसका रिप्लाई आया या नहीं आया, या वो भी तो यार
بہت مصروف ہے.

0: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं वजन 97.1 एफएम विद आरजे मौजम, प्रोग्राम कॉल्ड ड्राइव टाइम। वेल जी, आपके मैसेजेस आ रहे हैं, मैसेजेस का जवाब भी देते हैं और मैसेजेस के चाहने वालों को थैंक यू कहते हैं जिन्होंने अपने कीमती वक्त हमें दिया और हमें याद कर रहे हैं। सबसे पहला मैसेजेस मैं शामिल करूंगा, असल में मैसेजेस तो बहुत से हैं, रैंडम पर्सन को सिलेक्ट करते हैं जी। उस्मान फ्रॉम बर्मिंगम, आप कहते हैं कि मैं अपने वालिद साहब को थैंक यू कहना चाहता हूं जिन्होंने हमेशा हमें मोहब्बत और ईमानदारी का सबक दिया।
1: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
2: अटेंशन प्रॉपर्टी ओनर्स एंड लेटिंग एजेंट्स, Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077-30-791-412 or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
3: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
4: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
3: सलासा ट्यूशन सेंटर?
4: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेसफोर्ड NG77FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटन डेल NG24LG में है।
3: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
4: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
3: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
5: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 011591682311। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।

वेलकम बैक जी, आप सुन रहे हैं 97.1 FM विद आरजे मौजम और प्रोग्राम ड्राइव टाइम। जो इस वक्त नए शामिल हुए हैं उनको बताते चलूँगी, हमारे प्रोग्राम का आज का टॉपिक है कि छोटी छोटी बातें बड़ी बड़ी यादें। मैसेजेस के शामिल करने का सिलसिला जारी है और आप भी मैसेजेस में हमें बताएं कि आपकी ऐसी ज़िंदगी में कौन सी ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो आप कल को आप जी को आपके लिए ये बड़ी याद बन गए हैं। फिर से बताता चलूं कि जैसे कि जाहिर सी बात है कि आपके माइंड में ऐसी कोई चीज़ चल तो नहीं रही होगी या ऐसी कोई बात तो नहीं सोच रहे होंगे कि हाँ यार पता नहीं कौन सी बात हो सकती है। तो आपको मैं बताता चलूँ, जैसे कि आपके माँ का रोज़ कहना कि उठो नाश्ता कर लो, जैसे कि दोस्त के साथ मिलते हुए एक ख़ास दोस्त की शरारत याद रहना कॉलेज या स्कूल टाइम की, या दोस्तों से वो गपशप या वो बैठना या वो हाँ खाना पीना याद रखना रहना कि उनको पता चले हाँ यार ये तो है थी। ये बात हर एक के लिए यूनिक होगी, हर एक के लिए अपनी बात होगी, क्योंकि अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी में इतने मसरूफ़ हो गए हैं कि अपने कोई पुराने यादों को ताज़ा करने का टाइम ही नहीं मिलता। ख़ास करके अपने माँ बाप को आप ज़रूर अपनी यादों में रखा करें, क्योंकि जिनके नहीं होते ये सिर्फ इन चीज़ का एहसास उन लोगों को ही होता है, या हमारी तरह परदेसी बंदों को भी होता है, पर जो इस वक्त इस दुनिया में नहीं है उनको इस चीज़ का अंदाज़ा ज़्यादा होता है कि जिनके माँ बाप इस दुनिया से चले गए हैं। प्रोग्राम को 100 बार करना नहीं चाहता, लिहाजा इससे इन शॉर्ट मैं इस चीज़ को वाइंड अप करता हूँ। तो मैसेज शामिल कर दिए हैं आपके और आपके प्यारे प्यारे पैगाम आ चुके हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है छोटी छोटी बातें बड़ी बड़ी यादें। मिस्टर अली फ्रॉम नॉटिंगम लिखते हैं कि मैं इस वक्त काम से वापस घर जा रहा हूँ और आपका शो सुन रहा हूँ। आज का मौजू बहुत अच्छा, सुनकर बहुत अच्छा लगा, मेरी भी बहुत सी यादें हैं जो आपका प्रोग्राम या आपकी ये बातें सुनकर ताज़ा हुई। अली, आपको दिल की अथाह गहराइयों वेलकम और हैव अ सेफ ड्राइव, और आपको शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मैसेज किया। पर अली, आपने मैसेज में ये नहीं बताया कि ऐसी कौन सी आपकी याद थी जो कि आप को हमारा शो सुन के आपको आपके जहन में आई और आपने ये चीज़ बताई नहीं है। अली, अगर आप अभी भी मुझे सुन रहे हैं तो आप ये चीज़ लाजमी शेयर करिए अगर आपका दिल है तो।

अच्छा जी, नेक्स्ट मैसेज शामिल करती हैं प्रिया फ्रॉम लंदन। आप लिखती हैं कि मैं आज पहली बार आपका शो सुन रही हूँ, आपको दिल की अथाह गहराई से वेलकम। आप कहती हैं कि वाकई ऐसा लग रहा है कि जैसे दोस्तों की महफिल में बैठी हूँ। जी बिल्कुल, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये रेडियो सिर्फ सुना नहीं जाता, महसूस किया जाता, और एक ये रेडियो स्टेशन सिर्फ फजा 97.1 सिर्फ रेडियो चैनल नहीं है, बल्कि ये एक महफिल है जहाँ हर दिल गाता है, हर दिल गुनगुनाता है, हर दिल अपनी बातें शेयर करता है और एक फैमिली की तरह लगते हैं। और आपको ये महसूस होने नहीं दिया जाता कि आप लोग इस वक्त अपने पराए देश में हैं, आपको ये महसूस करवाया जाता है कि आप अपने लोगों के साथ अपने शहर में, अपने देश में, अपने घर में मौजूद हैं। जस्ट लाइक अ फैमिली। अंजलि, अंजलि, अंजलि एक इंडियन फिल्म में जो एक हीरोइन का नाम याद आ गया है, अंजलि फ्रॉम बर्मिंगम। आपने पूछा था कि कौन सी छोटी बात बड़ी याद बन गई मेरे लिए, वो अब्बू के साथ शाम की चाय थी जो आज भी याद आती है। जी कुछ लोग होते हैं कि कुछ लोगों की डेली रूटीन होती है कि वो शाम को या दिन को जब भी फ्री होते हैं वो मिल बैठ के चाय पीते हैं। आजकल की मसरूफ़ ज़िंदगी में या यूके की मसरूफ़ ज़िंदगी में ये चीज़ें तो नहीं होती, हर कोई अपनी अपनी भाग दौड़ में होता है, कोई शिफ्ट को जा रहा है, कोई शिफ्ट को आ रहा है, तो मिल बैठ के बात करने का इतना टाइम ही नहीं होता, इतनी मसरूफ़ ज़िंदगी है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है अंजलि, कितनी खूबसूरत बात है अंजलि, के कुछ वक्त गुजरने के साथ साथ भी कीमती हो जाते हैं। जैसे कि आपको अभी अपने वालिद के साथ बैठ के एक चाय का कप याद आ गया, तो मैं चाहूँगा कि आपको सॉन्ग भी आगे आपके आपको और आपके वालिद को अगर वो भी सुन रहे हैं तो एक डेडिकेट करूँ। और थैंक यू आपका वेलकम, आपका इस शो में मैसेज करने का। आप लिसनर ही हमारी जान है और यही आरजे की बड़ी कामयाबी है कि आप हमें अपने होने का एहसास देते हैं।

वेल आकाश फ्रॉम नॉटिंगम, आपने आप लिखते हैं कि जब ऑफिस ऑन किया और सीधा आपका शो लग गया हैं। ओह सॉरी, ये मेरे से पढ़ने में मुश्किल हुई, थोड़ी सी ऊपर नीचे हुआ। आप कहते हैं कि रेडियो जब मैंने ऑन किया तो डायरेक्ट आपका शो लगा। आपकी बातें वाकई दिल तक महसूस हो रही हैं और अपनी पुरानी यादें ताज़ा हो रही हैं। आकाश, यही मैं बार बार कह रहा हूँ कि यही तो एक आरजे की कामयाबी है कि हमारी बातें आपको के दिल तक पहुँचें, और ज़्यादा दिल पे नहीं भी नहीं लेनी। हम हमारा ये अपनी आपकी मसरूफ़ ज़िंदगी में से जो आप दो घंटे हमारे लिए निकालते हैं या कुछ मिनट निकालते हैं, वो हमारा ये ही जेन होता है कि आपको फुली इंजॉय करवाया जाए और आपको बोरियत महसूस ना करवाई जाए। और बोरियत से मुझे याद आया कि मुझे लगता है कि कुछ टाइम ज़्यादा ही मैं बोल गया हूँ, क्या करूँ कि आपके मैसेजेस ही बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो मुझे फिर ये हर एक को नाराज़ भी नहीं करना, क्योंकि हर एक जो भी मैसेजेस कर रहे हैं वो इंतज़ार कर रहे होंगे हाँ हमारा मैसेज कब होने हो रहा है या हुआ जाएगा। खैर, जो अभी नए शामिल हुए हैं उनको बताते चलूँ कि मैसेज करने का तरीका वही है, व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हैं 01157100971 हमारा नंबर है, इस पे अपना शहर का नाम और अपना नाम और अपनी प्यारी सी याद जो आप अपने प्यारे को याद करके बताना चाह रहे हैं वो ज़रूर शेयर कीजिएगा। और सुनते हैं नेक्स्ट सॉन्ग और इसके बाद वापस आके आपके मैं मज़ीद मैसेजेस शामिल करूँगा।

आकर्षित गया मैं प्लास्टिक फैंटास्टिक बम्बास्टिक बनावट लगा मत के मैं धक्के दिखा मत मार्केट में वैसे ही भारी गिरावट निकले लड़ा मत पुरानी कहावत जो करता मोहब्बत नहीं रहता सलामत

0: की भीड़ में फंस गई लैला।
1: वेलकम बैक और नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जो मेरे नए शामिल होने वाले लिसनर हैं, आप सुन रहे हैं 97.1 एफएम एंड डैब। मैं आपको वेलकम करता हूं और दिल की अथाह से आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि अपनी मसरूफ जिंदगी से आपने अपना वक्त निकाला। मैं वहां तक करना चाहूंगा उनको जो इस वक्त मुझे कार ड्राइव करते हुए सुन रहे हैं, या कैब ड्राइव करते हुए सुन रहे हैं, ट्रक, इवन के ट्रक ड्राइव करते हुए सुन रहे हैं। आपको कहना चाहूंगा कि हैव अ सेफ ड्राइव। ड्राइव करते हुए ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि ट्रैफिक रूल्स को ज़रूर फॉलो करें और अपनी जान की भी हिफाजत करें, और जो लोग कैब चला रहे हैं या ट्रक चला रहे हैं या कोई भी ऐसी चीज़ हैवी चीज़ चला रहे हैं जो जिसमें एहतियात करना ज़रूरी है, आप कोशिश कीजिए कि ट्रैफिक रूल्स को ज़रूर फॉलो कीजिए। क्योंकि आपसे ज़्यादा आपकी जान कीमती है और घर जल्दी पहुंचने से ज़्यादा है कि लेट पहुंचा जाए और पर सेफ ड्राइव की जाए।

मुखातिब करता जाऊँ उन लोगों को जो इस वक्त मुझे रोड पे वॉक करते हुए सुन रहे हैं या पार्क में जॉगिंग करते हुए सुन रहे हैं। मैं कहता हूँ कि ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। हर एक एज के आप किसी भी एज के हैं या एज के किसी भी हिस्से में हैं, आपको दिन में एक बार कुछ ना कुछ हेल्थी एक्टिविटी ज़रूर करनी चाहिए। मैं भी करता हूँ हर सुबह उठ के। हेल्दी एक्टिविटी आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी है। अब बात करता जाऊंगा वो लोग जिन इस वक्त मुझे ऑफिस में सुन रहे हैं। आपको भी ये कहना चाहूँगा कि अगर आप मुझे ऑफिस में सुन रहे हैं तो आप भी अपने कंपनीज के रूल्स को ज़रूर फॉलो करें। अगर आपकी कंपनी इस चीज़ को अलाउ नहीं करती कि आप ड्यूरिंग द ड्यूटी आप मुझे सुने, तो कोशिश कीजिए इस चीज़ को अवॉइड कीजिए। अगर ये किसी को ये बात दिल पे लगी हो तो उससे माजरत पायन माफ़ी चाह देवे। मजबूरी ये है कि हमारी बात से ज़्यादा आपकी नौकरी बेहतर है, क्योंकि आपने अपनी नौकरी से अपने घर और अपने बच्चों का पेट पालना है। हाँ जी, अगर आप को कंपनी इजाजत देती है तो आप जरूर सुने। या फिर घर जाते हुए सुने या घर जाके सुने। घर जाते हुए याद आया कि मैं जो लोग इस वक्त घर से मुझे सुन रहे हैं उनको तो कहना ही भूल गया कि आपको भी मैं वेलकम करता हूँ। जो लोग इस वक्त मुझे घर में टेरेस पे खड़े होकर एक कप चाय या कॉफ़ी के साथ सुन रहे हैं, आपको भी वेलकम कहता हूँ। अब आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आई होगी और आपने सोचा होगा हाँ मेरा भी नाम ले ही लिया इसने। या उन खवातीन को कहना चाहूँगा जो इस वक्त काम करते हुए या फ्री टाइम में मुझे सुन रही हैं कि आपको भी वेलकम कहता हूँ और आपको आने वाले कुछ देर तक मैं आपके नाम भी एक सॉन्ग ज़रूर डेडिकेट करूँगा, क्योंकि आपकी एफर्ट्स ही इस तरह की हैं। दिन भर आपने बच्चों को भी संभालना होता है और अपने काम को भी देखना होता है। और मैं बच्चों के साथ भी वेलकम कहता हूँ जो इस वक्त मुझे फ्री टाइम में मुझे सुन रहे हैं या ड्यूरिंग स्टडी साथ साथ मुझे सुन रहे हैं। है जी, आप अपने पैगामात और अपने कोई भी मैसेजेस या कोई ऐसी डेडिकेशन या किसी को कोई भी पैगाम, जैसे कि किसी को हैप्पी बर्थडे या हैप्पी एनिवर्सरी कहना हो या कोई भी ऐसा खास चीज़ जो आप कहते चाह आपका दिल करता है कि ये चीज़ मैं आपको या आपके प्रोग्राम में शेयर करूं, या ऐसी कोई ज़रूरी चीज़ जो हमारे अभी लिसनर जो मुझे शुरू से सुनते आ रहे हैं, जैसे कि मैंने बात की कि छोटी छोटी बातें बड़ी बड़ी यादें, उसके वाले से भी अगर आपको कोई भी मैसेजेस है तो आप ज़रूर मुझे बताइए। बताने का तरीका जो नए शामिल हुए हैं उनको बताता चलूं कि आप मुझे लाइव कॉल के ज़रिए भी सुन सकते हैं। लाइव स्ट्रीम तो आप सुन ही रहे हैं, इसके अलावा मुझे आप एप्लीकेशन के ज़रिए भी सुन सकते हैं। और मैं बताता चलूं कि आप मुझे जो लोग कार ड्राइव कर रहे हैं कि आपको अगर आवाज़ की डिस्टर्बेंस है तो आप मुझे डैब पे सुन सकते हैं। हर एज इन सब चीज़ों का भी बताता चलूं कि अगर आप मुझे मैसेजेस या शामिल करना चाहते हैं तो मैसेजेस के थ्रू शामिल होना चाहते हैं हमारी महफिल में, तो आपने नंबर सेव करना है 01157100971। इसके अलावा अगर आप मुझे हमें लाइव सुनना चाहते हैं तो radiofaza.co.uk और ऐप स्टोर और प्ले स्टोर से एप्लीकेशन या डाउनलोड कर लें रेडियो फजा 97.1 FM। रिपीट करता हूँ, रेडियो फजा 97.1 FM। का ये बेनिफिट है कि आपको कोई लॉगिन की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने ऐप डाउनलोड करना है और क्लिक करना और डायरेक्ट जो भी आ जाए उस वक्त या जो भी सॉन्ग लगा होगा तो वो आपके सुनने को मिलेगा।
ऐप पे वेबसाइट का भी ऑप्शन है, अगर डायरेक्ट आप उससे भी आप क्लिक करें, वेबसाइट पे क्लिक करें, तो आप डायरेक्ट फजा रेडियो फजा डॉट को डॉट यूके की वेबसाइट पे जा सकते हैं, जहां पे आप शेड्यूल चेक कर सकते हैं, आपके पसंद का आरजे कौन है, किस टाइम कौन सा आरजे क्या शो कर रहा है।

अपने हमारी मार्केटिंग टीम से भी रब्ता कर सकते हैं थ्रू radiofaza.co.uk। मैसेजेस का सिलसिला भी जारी रहेगा और आपके जो फरमाइशें हैं वो भी साथ साथ हैं। और क्या करें जी, इतना प्यार आप लोग दे रहे हैं, आज मेरा सेकंड शो है और आप सब यही कह रहे हैं, मुझे डिसार्ड किसी ने नहीं किया, सब ने अप्रिशिएट ही किया है और मैं आपका ये शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और फजा 97.1 FM के प्लेटफॉर्म का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और अपने ट्रेनर का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मेरी आवाज़ को तराशा, इस काबिल किया कि मैं आप लोगों तक अपनी आवाज़ पहुँचा सकूँ। खैर जी, आपका वक्त ज़ाया नहीं करते और सॉन्ग चलाते हैं और आफ्टर दैट सॉन्ग मैं आपके मज़ीद मैसेजेस शामिल करूंगा, तो सुनते हैं नेक्स्ट सॉन्ग।

पल पल दिल के पास अरिजीत सिंह का लिरिक्स है, और अरिजीत सिंह हर एक की मुझे लगता है कि प्लेलिस्ट में लाजमी होता है, और अरिजीत सिंह की बात ही ऐसी है कि डाउन टू अर्थ बंदा है। मुझे लगता है कि मैंने जो भी सिंगर देखे हैं वो इस तरह के नहीं होते जिस तरह के अरिजीत सिंह को मैंने पाया है। लाइव तो नहीं देखा हुआ, पर मैंने जो इसके बारे में सुना है या देखा है जो वीडियोस वगैरह में, यही कहना चाहूँगा। तो आपका वक्त ज़ाया नहीं करते, सॉन्ग प्ले करते हैं।

0: It's commercial time.
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडिल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: अरियाना सुपरमार्केट, 126132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8 3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू लव।
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है। और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW।
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.
11: मोहब्बतों में शुमार कैसा, यकीन कैसा, गुमान कैसा, सवाल कैसा, जवाब कैसा, अरूज कैसा, जवाल कैसा, मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में हिसाब कैसा। इन्हीं मोहब्बतों को समेटे हुए हम हैं आपके साथ
12: 97.1 FM।
0: हिट म्यूजिक, बैक टू बैक।

All right, जनाब, once again, welcome back. मौसम की आवाज के बाद आप सुन रहे हैं उस्मान खान की आवाज, और ये आवाजें डेली बेसिस पे चेंज होती ही रहेंगी. उम्मीद है कि आपने मौसम की आवाज को पसंद किया होगा, और साथ साथ आपने मौसम का जिस तरह से साथ दिया, बेहद शुक्रिया आप तमाम तर समातों का. आप सुन रहे हैं जनाब 97.1 FM नॉटिंगम के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम ड्राइव टाइम, और अब इस प्रोग्राम को हम थोड़ा सा चेंज करके ड्राइव जोन में ले आए हैं. उम्मीद है कि मेरे इस चेंज करदा नाम को आप पसंद करेंगे. वेल, नए आने वाले मौजूद मेहमानों को भी खुश आमदीद कहेंगे, और आपको कहेंगे कि आपने प्रोग्राम में शामिल होना है 01157100971 पे व्हाट्सएप पर मैसेज करके. लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू हमें सुन सकते हैं radiofaza.co.uk, या फिर एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं रेडियो फजा 97.1 FM के नाम से. ड्राइव कर रहे हैं तो फजा डैप पर आप मुझे ट्यून कर सकते हैं और प्रोग्राम को एंजॉय कर सकते हैं इतने खूबसूरत से क्लाउडी वेदर में. फिर अगर रोमांटिक ट्रैक्स ना हो तो मज़ा बिल्कुल नहीं आता. और फिर रोमांटिक आवाज़ों में सबसे अच्छी और पसंदीदा पसंद की जाने वाली आवाज़ जो है वो अरिजीत सिंह की है, लेकिन ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि बोरियत की तरफ चला जाएगा, इसलिए हम इसको मुकम्मल तौर पे तो शामिल नहीं करेंगे. कोशिश करेंगे कि अगर यही वाले सॉन्ग हमें ज़रा रिमिक्स टाइप में मिल जाएं तो मज़ा आ जाएगा. सो और फिर सिर्फ सॉन्ग्स ही अगर मैशअप हों तो वो ज़्यादा ज़्यादा मज़े के लगते हैं. तो लीजिए अरिजीत सिंह की आवाज़ को ज़रा नॉन स्टॉप अरिजीत सिंह में लेकर चलते हैं. उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएंगे. इस ट्रैक के उस पार हो गया. फिर से मुलाकात जॉइन करने में रहिएगा मेरे साथ साथ. हम ये होस्ट उस्मान खान एंड मोहसम अली.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे, सोने ते स्वागा ये, क्यों हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
3: चले उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Bedford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

नजम से गजल बन गई, तू रोज ही बदलती रही, असर से दखल बन गई, शिकायतें बढ़ती रही, मोहब्बत ये जंग बन गई, जिंदगी चलती रही, तुझको खबर ही नहीं, कोई डरी नहीं, तो लड़ भी नहीं, बात आगे बढ़ती नहीं, तमाशे खत्म कर अभी, वो गलतियां गिनती गई, नफरतें बढ़ती गई, लोगों की सड़ती रही, शराब मुझे चढ़ती नहीं, मेरे आगे कभी किसी की भी चलती नहीं, शामिल

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Hazar 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: It's commercial time.
1: Are you passionate about arts, culture, and making a difference in your community? Breeze Connect is looking for a creative and enthusiastic arts officer to help develop exciting projects, organize cultural events, and engage local communities through the arts. If you're ready to turn your creativity into a rewarding career, we'd love to hear from you. Apply online today by visiting www.breezeconnect.org.uk. Join Breeze Connect and help inspire communities through creativity.
2: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
4: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
4: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
5: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
4: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
6: आप सुन रहे हैं वो स्टेशन जो सिर्फ गाने नहीं यादें सुनाता है।
7: देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए दूर।
6: फजा 97.1 FM, हर पल आपके साथ साथ।

0: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डिकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 077152।
1: You are listening 97.1 FM.

0: जबरदस्त हिट्स,
1: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर.
2: फजान 97.1 एफएम,
1: आई लव इट.
3: This is a public service announcement.
4: Everybody. The station
5: that plays
6: foot tapping music.
7: Hazar 97.1 FM.
8: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन. सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहाँ. तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ, और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: आर्याना सुपरमार्केट, 126132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8 3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। आर्याना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू'ल लव।
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 Plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
9: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
10: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
9: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
10: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
9: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
10: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
9: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
10: हर दिन को बनाएं स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
9: टेस्ट भी, वाइब भी।

0: FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डैप।
1: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
2: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077-30-791-412 or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
3: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो। आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
4: भाई मुबारक तो उस लासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
3: लासा ट्यूशन सेंटर?
4: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेसफोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
3: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
4: मसला ही कोई नहीं, लासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफस्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
3: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
5: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए लासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
6: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
7: आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM।

0: हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजाना 97.1 FM पर।

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोखी हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

0: commercial time.
1: हेलो सुमान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ, और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: आर्याना सुपरमार्केट, 126132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8 3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। आर्याना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू'ल लव।
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW।
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 AM till 10:30 PM.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.
11: मोहब्बतों में शुमार कैसा, यकीन कैसा, गुमान कैसा, सवाल कैसा, जवाब कैसा, अरूज कैसा, जवाल कैसा, मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में हिसाब कैसा, इन्हीं मोहब्बतों को समेटे हुए हम हैं आपके साथ
12: 97.1 FM।

0: You are listening to Radio Fazza on 97.1 FM.
1: अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबाए। आहा।

0: manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
1: ओए खुशियां मनाओ पंगड़े पाओ पंगड़े पाओ पंगड़े पाओ
2: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं खैर तो है
1: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी
2: ओहो मुबारकबाद बहुत जल्दी आ गया
1: सारी नसीब दी गल है मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी
2: उनका नाम ही बता दे हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है
1: AMH सॉलिसिटर्स और कौन ओ वधिया ने दोस्ताना माहौल तेज ते जल्दी कम कर दे रहे सोने ते स्वागा ये क्यों हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने
2: चलें उनका पता भी बता दें आपको तो जुबानी याद होगा
1: हाँ जी क्यों नहीं नॉटिंगम रोड न्यू बेसफोर्ड नॉटिंगम
2: जबरदस्त मैं उनसे राबता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए नंबर क्या है
1: लो जी ओ भी जुबानी याद है 0115-671-3677 प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने मुफ्ता मशवरा लो जी
3: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham NG7 7BA. Large free car park available or call them on 0115 671 3677.

0: It's commercial time.
1: Are you passionate about arts, culture, and making a difference in your community? Breeze Connect is looking for a creative and enthusiastic arts officer to help develop exciting projects, organize cultural events, and engage local communities through the arts. If you're ready to turn your creativity into a rewarding career, we'd love to hear from you. Apply online today by visiting www.breezeconnect.org.uk. Join Breeze Connect and help inspire communities through creativity.
2: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
4: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए।
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
4: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्क टॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
4: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।
5: क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमराह चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोखी हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज

0: अब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक विजिट करें 136-138 अल्फ्रेड डेंकिन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 07593150669 मराया रेस्टोरेंट जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
0: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132 Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
6: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटनिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715।
7: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है

0: कहाँ पर हैं आप?
1: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
0: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
1: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
0: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
1: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
2: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
0: Park Foods, जो नाम है मायार का।
3: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser. Students Learning and Skills Academy.
4: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
5: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
4: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
5: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
4: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
5: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
4: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
5: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
4: टेस्ट भी वाइब भी।
6: You are listening 97.1 FM.